0: किसान भाइयों
1: जोहार।
0: खेती की बातें के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे सुरन की खेती के बारे में। सुरन को ओल जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है। पहले सुरन की खेती घर के आसपास, घर के पीछे बगीचों में थोड़ा थोड़ा करके की जाती थी, लेकिन वर्तमान में किसान अपनी बंजर भूमि में सुरन की खेती कर बेहतर कमाई कर सकते हैं, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सुरन सबसे लोकप्रिय कंद फसलों में से एक है, जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें पौष्टिक और औषधीय दोनों गुण होते हैं और आम तौर पर इसे पकी हुई सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसकी खेती का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है। अन्य सब्जियों की तुलना में गर्म तापमान में इसकी उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। किसान भाई यदि चाहें तो खरीफ सीजन में भी सुरन की खेती कर सकते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां सुरन को मार्च से मई महीने में लगाया जा सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहां जून जुलाई में इसकी रोपाई की जा सकती है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सुरन की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। इसकी सफल खेती के लिए 6 से 8 महीने की अवधि के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। जिमीकंद, सुरन या ओल की कई उन्नत किस्में हैं, जो गुणवत्ता, उपज और मौसम के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आप कौन सी किस्म चुनना चाहते हैं, इसे अपने क्षेत्र और जलवायु के आधार पर तय करें। गजेंद्र एक ऐसी किस्म है जिसकी खासियत यह है कि इसे खाने पर गले या मुंह में तीक्ष्णता नहीं होती है। इस किस्म में एक ही कंद बनता है और इसकी उपज 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। विधान कुसुम, यह किस्म भी काफी अच्छी है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में किए गए परीक्षण से यह देखा गया है कि इसके 6 महीने के फसल से 5 से 6 किलोग्राम प्रति पौधा उपज प्राप्त किया जा सकता है। इस किस्म में एक ही कंद बनता है और गले एवं मुंह में तीक्ष्णता हल्की है। इसकी उपज क्षमता 100 टन प्रति हेक्टेयर है। श्री पद्मा किस्म की उपज क्षमता 80 टन प्रति हेक्टेयर है एवं तीक्ष्णता भी नगण्य है। साथ साथ इस किस्म में भी एक ही कंद बनता है। सुरन बोने से पहले खेत को कल्टीवेटर से और फिर रोटावेटर से भुरभुरा बना लें और खेत तैयार करने के बाद 2-2 फीट की दूरी पर 30 सेंटीमीटर गहरा, लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद लें। इस तरह एक एकड़ में 4000 गड्ढे खोदे जाने हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसमें 3 किलो अच्छी तरह गोबर की सड़ी खाद, 20 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 10 ग्राम यूरिया, 37.5 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 16 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाकर बीज कंद की बुआई करें। ध्यान रहे कि फल से बीजों को तैयार करते समय बीजों का वजन करीब 250 से 500 ग्राम हो। हर कटे हुए बीज में कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए, जिससे पौधे का अंकुरण ठीक हो सके। रोपाई के 90 दिन बाद सिंचाई करनी होगी। सुरन की विशेषता यह है कि पूरे खरीफ मौसम में केवल 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है। बीज बोने के 8 से 9 महीने में फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि बेहतर कीमत पाने के लिए 6 महीने बाद भी कंदों की खुदाई की जा सकती है। सुरन लगाने के समय ही यदि सावधानियां बरती जाएं तो इसमें कीट और रोग का प्रकोप बाद में नहीं के बराबर होता है। इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण कीटों में एफिड, मकड़ी, थ्रिप्स, मिलीबग एवं सेमी लूपर है। एफिड, थ्रिप्स एवं सेमीलूपर से बचाव के लिए मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। मकड़ी से बचाव के लिए डाइकोफॉल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सुरन की फसल को मिलीबग से बचाने के लिए 0.5 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास लेकर उसे 1 लीटर पानी में मिलाकर उसके घोल से सुरन के कंद को लगाने के पहले उपचारित कर लें। इस तरह किसान भाइयों, यदि आप सुरन या ओल की खेती करना चाहते हैं तो सही तरीके अपनाएं। सही तरीके अपनाने से उत्पादन अच्छा होगा और आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। जोहार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। ये था आज का चिंतन।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देश वंदना।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 होने वाले हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीतकार है सतीश भाटिया।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे चर जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्रीराम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में

थे। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।
1: पिघलते फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात्रि 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के मुख्य चैनल FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 से आप सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत। इसके तहत आप सुनेगा चंदन दास की आवाज में गजल। 7:20 का समय होगा लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा भोजपुरी में मीनू शाही का गाया गीत। 7:35 का समय होगा बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरंजलि का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा आधुनिक बांग्ला गान। कलाकार होंगे गोरा चंद मुखोपाध्याय। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुनेगा 7:50 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा डॉक्टर रीना कुमारी की भेंट वार्ता, श्वेत प्रदर, लक्षण, कारण एवं बचाव। इनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 8 से सुनेगा समाचार प्रभात। 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का। प्रादेशिक समाचार सुनेगा 8:30 से, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 का समय होगा गांधी चर्चा का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 9 से सुनेगा हिंदी में समाचार। 9:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना का। 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा विदुषी परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन और फिर सुनेगा इन्हीं का गाया भजन।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले 10 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 10:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 10:10 से सुनेगा विश्व दर्पण। फिल्म संगीत सुनेगा 10:20 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 11 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 12 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत का। 12:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा विदुषी तरिमा ठाकुर का ख्याल गायन, राघो का वृंदावनी सारंग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 1 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 1:05

समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। प्रादेशिक समाचार सुनने का 1:10 से, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 का समय होगा फिल्म संगीत का।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में गजल।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मीनू शाही की आवाज में भोजपुरी में गीत।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आधुनिक गान। कलाकार हैं गोरा चंद मुखोपाध्याय।

उपाध्याय की आवाज में आप सुन रहे थे आधुनिक गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर रीना कुमारी की भेंट वार्ता, श्वेत प्रदर, लक्षण, कारण और बचाव। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे महिलाओं की एक बीमारी श्वेत प्रदर यानी कि लिक्योरिया के बारे में। ये है क्या, किन कारणों से ये होता है और फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन तमाम बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना कुमारी। डॉक्टर साहिबा, श्वेत प्रदर यानी कि लिक्योरिया कहते किसे हैं?
1: ये लिक्योरिया जो है, श्वेत प्रदर जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, ये आधुनिक जीवन शैली में ये महिलाओं में काफी संख्या में पाया जा रहा है। इसमें काफी थिक पुरुलियन डिस्चार्ज मीन्स बहुत ज्यादा स्त्राव जो है वो वेजाइनल आपका सिक्रीशन होगा, वो व्हाइट या येलोइश व्हाइट कलर की होगी और उसके साथ जो है वो कभी कभी तो उसमें गंध भी काफी खराब रहता है और ये जो है काफी समय से ये चलता है। इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर ये शुरुआती में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो बाद में जो है काफी भयंकर रोग का ये रूप ले लेता है। इसके लक्षण तो काफी सारे हैं, कुछ कुछ लक्षण मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि कमजोरी लगना, बहुत ज्यादा चक्कर आना और लगेगा कि मुझे भूख नहीं लग रहा है, थोड़े थोड़े देर में मैंने काम करते करते थक जाइएगा, खून की कमी आने लगती है और उसके बाद जो है जोड़ों में और पूरे बदन में दर्द होने लगता है, महिला जो है चिड़चिड़ापन टाइप का हो जाती है। और तो इससे सावधानी बरतने के लिए हमें दोस्तों खास ध्यान रखना है अपने साफ सुथरा का, हाइजीन का, हाइजीन मेंटेन करना है। कहीं भी आप अक्सर महिलाएं जो है जो कार्य करने वाली जो वर्किंग लेडी जो है उनके लिए ये प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जहां भी काम करने मैंने पोस्टेड रहती है वहां बाथरूम्स वगैरह का सुविधा नहीं रहता है, तो कहीं भी वो टॉयलेट वगैरह का यूज करती है, जो इन्फेक्टेड जगह रहता है वहां से आप इन्फेक्शन आप बियर कर रहे हैं।
0: ग्रामीण महिलाओं में ज्यादा शायद देखने को
1: मिलता है और इन दिनों यहाँ शहरी महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिल रहा है।
0: क्या विशेष कुछ कारण होता है जिसके कारण से ऐसा ज्यादा होता है महिलाओं में?
1: हाँ, ये जो है शादीशुदा जो महिलाओं में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि ये STD रिलेटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये उनके अगर पार्टनर को अगर कुछ पहले से कुछ रोग है तो उनकी जो महिला है उनको ये रोग माने इजी वे में ये जो है आ जाता है और वो जो है अनदेखा कर देती है, उसके बाद वो बढ़ते जाता है, वो फ्रीक्वेंसी, वो लक्षण उसका बढ़ते जाता है, जो काफी मुश्किल होता है बाद।
0: अगर कोई अनदेखा करता हो इसे तो क्या दुर्गामी परिणाम होते हैं?
1: होता है, ये कैंसर का रूप ले लेता है। कैंसर में भी अगर शुरुआती में वो पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग रेडियोथेरापी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दवा से, इंजेक्शन से, ये सब से हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर उस पे अगर नहीं ठीक हो पाता है तो हम लोग फिर रेडियोथेरापी वगैरह हम लोग देते हैं।
0: अगर मान लीजिए कोई लिक्योरिया की शिकार महिला है तो गर्भ धारण करने में भी उनको परेशानी होती
1: जी,
0: है?
1: जी, काफी परेशानी होता है। ये जो है इनफर्टिलिटी, ये बांझपन का भी शिकार बनाता है, इसके काफी कुप्रभाव होते हैं। जिसको भी लिक्योरिया की अगर शिकायत अगर कोई महिला करती है तो उसका शुरुआती में ही उसका जो है मेडिकल सलाह उसको लेना चाहिए और इसके लिए जो है आपका खान पान सही होना चाहिए, प्रॉपर डाइट सही समय पे वो ले, अच्छी नींद उसके पूरा होना चाहिए, बीच बीच में उसको फॉलिक एसिड, आयरन की टेबलेट लेना चाहिए, उसको प्रॉपर जांच करवाना चाहिए, हर 15 दिन में, हर महीने में उसको चेकअप करवाना चाहिए, तो इससे इस बीमारी से आप काफी हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं।
0: एक सलाह या संदेश हमारी महिला श्रोताओं के लिए जो इस तरह की बीमारी से जूझ रही है?
1: मैं सभी महिलाओं से मैं यही सलाह दूंगी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कुछ एबनॉर्मल, आपको अगर एबनॉर्मल फीलिंग्स होता है, डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तो आप तुरंत आपके जो नजदीक स्वास्थ्य केंद्र है या आपसे संपर्क में जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप सलाह लीजिए, आप इसकी जानकारी लीजिए और जितना शीघ्र हो उसका आप इलाज कराइए।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान,
4: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
6: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
6: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और फिर 8:15 से मॉर्निंग न्यूज। 8:30 से हम आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र लिए चलेंगे जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में

0: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। छोटे प्रखंडों और अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड में एसआईआर अभियान के दौरान 50,000 कर्मियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक।

0: रोक। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे। श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़े रफ्तार, मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले दो दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 से कम पंचायतों वाले प्रखंडों और अंचलों में एक ही पदाधिकारी बीडीओ या सीओ के रूप में कार्य करेंगे, जबकि 12 से अधिक पंचायतों वाले प्रखंडों में दोनों पद यथावत रहेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
1: हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दिया, स्पेशल प्रोविजन भी हम लोगों ने उसमें डालने का सहमति दिया। आप लोगों से अब तैयारी चल रही है, समय आने मैंने भी फॉर्म भरा। चुनाव आयोग पूरे देश के कई राज्यों में एस आई आर का काम आरम्भ, और मैं भी आप लोग के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग इस कार्यक्रम में और एस आई आर की जो प्रक्रिया है उसमें।
0: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे करीब 50,000 कर्मियों और पदाधिकारियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि 7 अक्टूबर तक एसआईआर कार्य में लगे किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों और हेल्प डेस्क मैनेजरों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मिल रही शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी मतदाता को फॉर्म भरने या एसआईआर से जुड़ी कोई समस्या है तो वे टोल फ्री नंबर 1950 या बुक अ कॉल के जरिए संपर्क करें। मतदाता अपने बीएलओ से एसआईआर स्टिकर पर दिए गए नंबर, ईसीआई नेट ऐप पर बुक अ कॉल और कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स फीचर टोल फ्री नंबर 1950 या सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची के कांके में कांग्रेस की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर बैठक हुई। इसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बीएलओ के साथ अभियान की समीक्षा की। मौके पर राजू ने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को जागरूक कर विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।
2: कांग्रेस पार्टी हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक बूथ में वो एसआईआर प्रोसेस में बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ। लास्ट 6 महीने में ये प्रक्रिया के बारे में हम हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े एक मामले में कहा है कि एडहॉक आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले अस्थाई कर्मचारी भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को केवल अस्थाई होने के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला सुनाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे से रेस्क्यू किए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक

0: नियंत्रण कक्ष ने विशेष राहत अभियान चलाकर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, जबकि मृतका का पार्थिव शरीर भी सम्मानपूर्वक उसके गृह जिला पहुंचाया गया। सुरक्षित घर लौटने पर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। झारखंड सरकार आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश, आईटी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं पर फोकस होगा। सचिव आईटी पूजा सिंघल और सचिव उद्योग अरवा राजकमल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। दो दिवसीय आयोजन के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशन और पीपीपी पॉलिसी समेत कई नीतियों के ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे और विभिन्न एमओयू पर हस्ताक्षर और डिजिटल पोर्टल्स की लॉन्चिंग होगी। गुमला सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर को नई अनुज्ञप्ति मिल गई है। जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने इसे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब 6-7 महीने के प्रयास के बाद लाइसेंस मिलने से अब जिले में रक्त उपलब्धता की समस्या दूर होगी।
1: सदर हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर पूर्व में वर्ष 2018 से चल रहे थे, वो 2022 में इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के कारण समाप्त हो गई थी। ब्लड सेंटर तो चल रहा था लेकिन अनुपति नहीं थी, जो बंद होने के उपरांत हमारे जिला में ब्लड को लेकर काफी परेशानी होने लगी।
0: रांची में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने कल रात कई बार और पब में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन स्थानों पर नाबालिगों का प्रवेश न हो और किसी भी तरह की अवैध या आपराधिक गतिविधियां न होने पाए।
2: स्पेशली जो अंडर एज ड्रिंकिंग है, कोई भी बच्चा अगर 21 साल से कम का है तो उसे किसी भी शॉप में या फिर वहाँ पे, चाहे वो सिगरेट हो या फिर लिकर हो, सब नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है, क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति सेवन करता है तो और रोड पे निकलता है, बाइक को चलाता है, उस टाइम पे एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है। तो एक लूप है, उसमें एक बच्चा कुछ भी गलत काम करता है तो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा दायित्व बनता है कि उनसे इन सब चीजों में ना पड़ने दिया जाए और उनकी मदद की जाए इस तरह से।
0: झारखंड में मॉनसून सक्रिय होने से बारिश की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों में राज्य में औसतन 40 मिनट वर्षा दर्ज की गई, जिससे बारिश की कमी घटकर 61% से 46% रह गई है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत कई जिलों में बारिश तथा अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अखबारों की सुर्खियां, रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, रिम्स 2 2 चरणों में होगा विकसित, 2800 बेड का होगा अस्पताल। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड के विरोध में आज भाजपा ने बुलाया बंद। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले मामले में 2 आरोपी एनआईए की रिमांड पर। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति पर चल रहा है विचार। और अब अंत में मुख्य समाचार, झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, छोटे प्रखंडों और अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड में एसआईआर अभियान के दौरान 50,000 कर्मियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे, श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है गांधी चर्चा कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं डॉक्टर मुदिता चंद्रा की वार्ता गांधी जी की दृष्टि में लोकतंत्र और अहिंसा।

0: श्रोताओं, महात्मा गांधी केवल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही नहीं जाने जाते थे जैसा कि हम उन्हें आज याद करते हैं। वे सिर्फ भारतीय राष्ट्रपिता भी नहीं थे, वे 20वीं सदी में गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक सिद्धांत के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। गांधी जी के बिना अहिंसक लोकतांत्रिक सिद्धांत विश्व भर में सत्तावादी शासनों के विरुद्ध वैश्विक नागरिक प्रतिरोध में व्यापक रूप से प्रचलित नहीं हो पाता। गांधी जी ने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म जैसे पूर्वी धर्मों में प्रचलित अहिंसा की धार्मिक अवधारणा को जन प्रतिरोध के एक लोकतांत्रिक हथियार में बदल दिया। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक विश्व में लोकतंत्र निर्माण की तात्कालिक समस्याओं के संदर्भ में अहिंसा की पुरानी अवधारणा को नया रूप दिया। गांधी जी के लोकतंत्र के दर्शन ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृतियों और धर्मों की विविधता में एकेश्वरवाद विरोधी और बहुलतावादी आयाम प्रस्तुत किए। उनका अहिंसक लोकतांत्रिक सिद्धांत समावेशी और संवादपरक सहजीवन के विचार पर आधारित था। ये विचार किसी भी रूप में राष्ट्रीय या धार्मिक स्वार्थ और कट्टरता का विरोध करता था। इस प्रकार अहिंसा को केवल राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक मुक्ति के साधन के रूप में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र निर्माण के लिए एक अनिवार्य नैतिक अनिवार्यता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। गांधी जी के दृष्टिकोण से लोकतंत्र समाज को संगठित करने का एक राजनीतिक तरीका होने के साथ साथ सामुदायिक आचरण का एक नैतिक तरीका भी था। अहिंसक लोकतांत्रिक सिद्धांत में नैतिक और राजनीतिक एक ही थे। अब आइए सुनते हैं डॉक्टर मुदिता चंद्रा की वार्ता, गांधी जी की दृष्टि में लोकतंत्र और अहिंसा।
1: महात्मा गांधी सदी के महान दार्शनिक, साधक, कर्मयोगी, राजनेता एवं समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की सक्रियता न सिर्फ अंग्रेजी सत्ता के स्थान पर भारतीय सत्ता के अधिग्रहण की कहानी है, अपितु उनका आगमन सुषुप्त भारतीय संस्कृति का पुनराविर्भाव है। मनोवैज्ञानिक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विश्व में दुख तथा संघर्ष का वास्तविक कारण व्यक्तित्व का विखंडन है। यह विखंडन व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों का हो सकता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन दर्शन सत्य के प्रयोग के माध्यम से विश्व भर के दुखी, विक्षुब्ध तथा क्रोधाग्नि से उन्मत्त लोगों के लिए यह संदेश दिया था कि सृजनात्मक, अहिंसक और आध्यात्मिक जीवन का व्यक्ति के इंद्रिय जनित कामनाओं के साथ अंतः सामंजस्य प्राप्त करना ही इस विखंडन का उपचार है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाकर एशिया की युगों पुरानी बुद्धिमत्ता की सार्थकता सिद्ध कर दी। यदि सभ्यता के सर्वनाश को रोकना है तो हमें उनकी शिक्षा, उनके चिंतन की ओर ध्यान देना ही होगा। महात्मा गांधी जी का चिंतन ऐसे समय का है जब विज्ञान यंत्र, बल, आतंकवादी प्रवृत्ति एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य ने विश्व में संशय एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न कर दी थी और जगत समुचित आदर्शों एवं मूल्यों के अभाव में पंगु होने लगा था। तब ऐसी परिस्थिति और पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी ने भारतवासियों को सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति का एक ऐसा अस्त्र प्रदान किया जिसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र, सशक्त, संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। साबरमती के इस संत ने भारत को एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की जो विश्व के इतिहास में अनोखी एवं अनूठी है। कहीं भी स्वतंत्रता अहिंसात्मक उपायों से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता और युग पुरुष की उपाधि से विभूषित किया गया है। महात्मा गांधी एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। वे भारतीय राष्ट्रीयता के अमूर्त रूप थे। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश, समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें उन्हें एक सच्चे राष्ट्रवादी देशभक्त के रूप में पूरे करने चाहिए, परंतु वे संकीर्ण या उग्र राष्ट्रवाद के उपासक नहीं थे। वे तो एक रचनात्मक और मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे। उन्होंने राष्ट्रीयता को कभी भी संकीर्ण, स्वार्थी और एकाकी अर्थों में ग्रहण नहीं किया और न ही उन्होंने

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मानवता के व्यापक हितों की कभी अवहेलना की। गांधी जी का कहना था कि मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के पतन या विनाश पर नहीं चाहता। मैं उस राष्ट्रभक्ति की निंदा करता हूं जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण और मुसीबत से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। गांधी जी अपने राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के साथ साथ समस्त विश्व का भौतिक, मानसिक तथा नैतिक स्तर ऊंचा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि विश्व के सभी राष्ट्र आत्मतर निर्भरता की आत्मघाती नीति को छोड़कर आत्मनिर्भर रहते हुए एक विश्व संघ की स्थापना करें। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समस्त विश्व के मनुष्यों को शोषण, दुख, भूख, अज्ञानता तथा भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से बचाना था। आज जब पूरा विश्व आतंकवाद के गिरफ्त में है, चारों तरफ पाशविकता का घिनौना रूप देखने को मिल रहा है, हर जगह मानवता और नैतिकता कुचली जा रही है, ऐसे में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम और सत्याग्रह के सिद्धांत विलक्षण महत्व रखते हैं। वे संतस्त्र मानव जाति के लिए अंधकार पूर्ण रात्रि में उज्ज्वल उषा की किरणों के समान है। गांधी जी के अनुसार एक सत्याग्रही प्रेम, सत्य और अहिंसा के बल पर बुराई, न्याय, असत्य तथा अवांछनीयता का मुकाबला कर सकता है। गांधी जी का संपूर्ण विचार मुख्य रूप से दो नैतिक मूल्यों पर आधारित है, सत्य और अहिंसा। साधारण अर्थ में हिंसा का त्याग अहिंसा कहलाता है। हम अपने जीवन में जितना अधिक सहानुभूति, करुणा और साधना का अभ्यास करेंगे, उतने अधिक अहिंसक बनते जाएंगे। भारतीय परंपरा की दृष्टि से गांधी की अहिंसा यदि एक ओर जैनों के अतिवादी और कठोर अहिंसा को मानती है, तो दूसरी ओर मनु द्वारा प्रतिपादित लचीली अहिंसा प्रणाली के भी खिलाफ है। गांधी का यह मानना था कि अहिंसा का आधार हमारा अंतःकरण होना चाहिए, हमारी शुभ भावनाएं होनी चाहिए। अहिंसा को भावात्मक रूप में गांधी जी ने सक्रिय प्रेम और व्यापक करुणा कहा है। इस दृष्टि से अहिंसा के साथ क्रोध, घृणा, प्रतिहिंसा, इन सबों से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि अहिंसा और घृणा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। गांधी जी की अहिंसा में बुद्ध की मैत्री, महावीर की करुणा, हिंदुओं की जीव दया की भावनाएं, ईसा का प्रेम, वेद, उपनिषद तथा गीता की सभी जीवों में आत्मा का निवास संबंधी विचार स्पष्ट होता है। अतः गांधी जी की अहिंसा धर्म और नैतिक जीवन का आधार है। अहिंसा को गांधी जी ने मूल रूप से सामाजिक नैतिकता का नाम दिया है, और खुद जियो औरों को भी जीने दो की तर्ज पर अहिंसा परमो धर्म की स्थापना की। यूं तो अहिंसा का सरलतम अर्थ हत्या नहीं करना है, लेकिन व्यापक दृष्टि से इसके को स्वीकारते हुए गांधी ने कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी की भी क्षति नहीं करना अहिंसा है। गांधी सत्याग्रह एवं अहिंसा के आधार पर स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, सर्वोदय समाज की स्थापना के साथ राम राज्य की प्रतिस्थापना करना चाहते थे। अतः गांधी जी के विचारों में जो नैतिकता का मूल गुण है, उसमें सत्य और अहिंसा का प्रमुख स्थान है, क्योंकि अहिंसा के पथ पर चलकर ही स्वस्थ समाज, विकसित देश, उन्नत मानवता की स्थापना हो सकती है। गांधी जी की विचारधारा में व्यक्ति को जो सम्मान प्राप्त है, वही लोकतंत्र का भी आधार है। उनका आदर्श राज्य अथवा राम राज्य राजनीतिक दृष्टि से सच्चा लोकतंत्र है। शक्ति और हिंसा पर आधारित लोकतंत्र अधिनायक तंत्र का दूसरा रूप है। सत्य और अहिंसा पर आधारित लोकतंत्र पद्धति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये समाज के सभी व्यक्तियों को समानता के धरातल पर संगठित करती है। महात्मा गांधी ने लिखा है, लोकतंत्र के बारे में मेरी धारणा है कि इसमें निर्बल व्यक्ति को भी वही अवसर प्राप्त होने चाहिए जो कि सबसे शक्तिशाली को प्राप्त होते हैं। यह अहिंसा के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता है। लोगों का विश्वास है कि चुनावों द्वारा स्वशासन की स्थापना करते हैं, पर उनका यह विश्वास कभी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि चुनावों द्वारा तो एक शोषक वर्ग जन्म लेता है जो व्यक्ति का नैतिक पतन कर देता है। गांधी जी का यह मानना है कि सदस्यगण अपने राजनीतिक दल को बिना विचारे ही मत दे देते हैं, उनका तथाकथित अनुशासन उन्हें ऐसा करने को बाध्य करता है। चुनावों का प्रचार व्यक्ति को मिथ्या भाषण के लिए प्रेरित करता है। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो जिले में बहुमत की तानाशाही न होने दे, अल्पमत तो क्या एक व्यक्ति की आवाज की भी कीमत हो। गांधी जी के

0: अनुसार सच्चा लोकतंत्र और जनता का स्वराज कभी भी झूठे और हिंसात्मक ढंग से नहीं आ सकता। इसका कारण यह है कि हिंसा से आए स्वराज में विरोधियों को दबा दिया जाता है, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल पूर्ण अहिंसात्मक राज्य में ही रह सकती है। इस तरह महात्मा गांधी अहिंसा द्वारा सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। अतः हम अंत में कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र वह है जिस शासन व्यवस्था में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है और सारे कार्य लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। वे चाहते थे कि ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं दैनिक जीवन में नैतिकता का पालन करे, जहां जाति धर्म में कोई भेदभाव न हो, न ही संपत्ति के आधार पर लोगों में ऊंच नीच की भावना हो और सभी सत्य और अहिंसा की राह पर चले। वर्तमान समय में गांधी के लोकतंत्र से देश का लोकतंत्र कोसों दूर है, परंतु यह भी सच है कि यदि हम गांधी के सिद्धांत पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तब निश्चित ही हमारा समाज राम राज्य में परिणत हो जाएगा और हम निश्चित रूप से गांधी के स्वराज की अवधारणा को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे।
1: गांधी जी की दृष्टि में लोकतंत्र और अहिंसा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुदिता चंद्रा की वार्ता और इसके साथ ही आज की गांधी चर्चा यहीं संपन्न होती है। इस अंक के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। तो फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए शिखा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

गांधी जी की दृष्टि में लोकतंत्र और अहिंसा, इसी विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर मुदिता चंद्रा की वार्ता। इसी के साथ कार्यक्रम गांधी चर्चा अब संपन्न होता है।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की

0: निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार के विवाद में चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश द्वारा संचालित होते हैं, जिसके अंतर्गत आयोग निर्णय लेने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावों, सहायक दस्तावेजों और विवाद से जुड़े गुटों की दलीलों की जांच करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है, गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।
2: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
6: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
7: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ
7: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
7: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
6: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
8: नमस्कार जमशेदपुर।

प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना। स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पार्श्व गायिका हेमलता के गाए कुछ बेहतरीन गाने। आइए सबसे पहले सुनते हैं आप तो ऐसे ना थे फिल्म का गीत। गाने के बोल लिखे निदा फाजली ने और धुन बनाई उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना, और कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका हेमलता के गाए कुछ गाने। कार्यक्रम में समय हो चला है अंतराल का, बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।

0: पिघलते फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात्रि 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के मुख्य चैनल FM 102.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर।

अंतराल हुआ पूरा। श्रोताओं, अपनी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाली पार्श्व गायिका हेमलता को बॉलीवुड में गाए उनके अनूठे गीत उन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस खोल देते हैं।

इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और अब आइए सुनते हैं पहली फिल्म का गाना। हेमलता के साथ इस गाने को गाया सुरेश वाडकर ने। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं विदुषी परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन। राग है दीन तोड़ी, ख्याल विलंबित एक ताल में है। बोल है निस दिन जपा करूं तेरो नाम। तराना तीन ताल में है। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं निजामुद्दीन खान।

आप सुन रहे थे विदुषी परवीन सुल्ताना का ख्याल गायन, राग था दीन तोड़ी। अब आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया भैरवी में ठुमरी, बोल हैं ओ मेरो राम जिया ना लागे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भास्कर तिवास्कर और हारमोनियम पर है वसंती महापसेकर।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईजी ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने

0: सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के लिए विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुस्तफा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई सुरक्षा कारण से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से

0: संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: और आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सखलीन अख्तर के पास।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, AI, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक DNA को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3: The leaders reflected on the very strong foundation.
4: दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि तथा स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया है। ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
3: In the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। इससे पहले बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने अमरीका को कड़ी चेतावनी दी। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई इसराइल के निशाने पर हैं। श्री अराग़ची ने कहा कि ईरानी नेतृत्व के खिलाफ किसी भी धमकी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान

0: कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत के बाद आए। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए। हमले में 30 स्थानों पर मुख्य रूप से आवासीय भवन और नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों से जारी हमलों का जवाब बताया। इन हमलों में मुख्य रूप से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इस कारण यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के 4 साल से अधिक समय बाद रूस में ईंधन संकट पैदा हो गया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सुनाया ताकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुए रूस के हमलों में 27 लोग मारे गए। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी लता मंगेशकर की, रचना थी शैलेंद्र की और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की आज पुण्यतिथि है। राजकुमार की गिनती अपने जमाने के सुपरस्टार्स में भी की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतनी ही उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी वे बाकी के लिए जाने जाते थे।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

अमित कुमार संगीत की दुनिया में आज एक जाना माना नाम है। इन्होंने कई मशहूर गाने गाए हैं। अमित कुमार सिनेमा की दुनिया में उन चुनिंदा गायकों में शुमार हैं जिन्होंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। आज 3 जुलाई को अमित कुमार अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

अमित कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे लव स्टोरी फिल्म का गाना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन। और अब आइए सुनते हैं अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम फिल्म का गाना। गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई आरडी बर्मन ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, आवाज थी अमित कुमार की, फिल्म का नाम था तेरी कसम। श्रोताओं, आज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्मदिन है। मिथुन चक्रवर्ती को उनकी मशहूर फिल्म डिस्को डांसर के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मृगया से की थी। पहली फिल्म से ही उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार

डिस्को डांसर इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं उषा उत्थुप और बप्पी लहरी की। इस गाने को संगीत से सजाया बप्पी लहरी ने। श्रोताओं, 80 के दशक में कई फिल्मों ने मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता बढ़ाई, जैसे कि हम पांच, डिस्को डांसर, गुलामी, डांस डांस, स्वर्ग से सुंदर, वक्त की आवाज, दाता, पसंद पैदा करने वाले की, प्रेम प्रतिज्ञा और अग्निपथ।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ गाना। आवाजें थी शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था गुलामी। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश

0: 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के टोरंटो में आज पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: Mitglied.
1: आज नमस्कार जमशेदपुर के साथ मैं कविता। नमस्कार दोस्तों,

श्रोताओं, असफलता का डर हर किसी को सताता है, पर सफल लोग असफलता के डर को नकारात्मकता से न जोड़कर उसे अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं। आप अपने कुछ

लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन कुछ में नहीं। आप मेहनत पूरी कर रहे हैं पर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। बहुत प्रतिभाशाली और सफल लोग भी असफलता और सफलता की इस पहेली को सुलझा नहीं पाते हैं। इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब ये है कि हम सब में जन्म से कुछ प्रतिभाएं होती हैं और कुछ खामियां भी, लेकिन सफलता तय करने में खूबियों और खामियों की भूमिका थोड़ी सी ही होती है। बहुत ज़्यादा सफल लोग अपनी सफलता का आधार सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति को ही नहीं बनाते, बल्कि इस बात को भी बनाते हैं कि ऐसा नहीं करके उन्हें नुकसान कितना ज़्यादा होगा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। ये अक्सर अपनी असफलता के डर या खोए हुए मौकों के मलाल को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं।

जब हमें कहा जाता है कि अपने सपनों का भविष्य तैयार करो, तो अधिकांश लोगों के मन में भविष्य का ये रोड मैप धुंधला सा होता है। अधिकांश लोग अपने द्वारा देखे गए इन सपनों पर ही विश्वास नहीं करते हैं। वहीं अपने सपनों पर अविश्वास करने की वजह का सफल लोग इस व्यक्त को ये तय करते हैं कि अपने भविष्य की इस रात में वो किस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे, किन चीज़ों से वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, कौन सा व्यवहार उनके लिए असह्य है। भविष्य का ये विजन उनकी सफलता तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। संगीत निर्देशन शंकर एहसान लॉय का था। फिल्म थी बंटी और बबली। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि असफलता को प्रेरणा कैसे बना सकते हैं।

असफलता के डर को प्रेरणा को का एक अहम आधार बताया गया है। असफलता के डर को पहले की तरह नकारात्मकता से नहीं जोड़ना है। एक शोध में इस बात पर बल दिया गया है कि असफलता का डर व्यक्ति में सिर्फ असुरक्षा और एंजाइटी का भाव ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि पहले से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये शोध बताता है कि इस डर को पुनर्भाषित यानी नए तरीके से उसकी व्याख्या करके और उसकी मदद से अपने नए और बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। सफल लोग केवल अपने लक्ष्यों का पीछा ही नहीं करते, वो उन लक्ष्यों के इर्द गिर्द खुद को परिभाषित भी करते हैं। जैसे मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ, कहने की जगह वो खुद से कहते हैं मैं एक लेखक हूँ। खुद को संबोधित करने का तरीका थोड़ा सा बदल कर ये अपने काम को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं। जब अपने लक्ष्य के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे पाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता नहीं रह जाती।

काला पत्थर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की थी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, प्रसिद्ध पार्श्व गायक और संगीतकार अमित कुमार का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 3 जुलाई 1952 को कोलकाता में हुआ था। वो महान अभिनेता और गायक किशोर कुमार के पुत्र थे। अमित कुमार ने अपने करियर में कई सदाबहार गीत गाए हैं।

श्रोताओं, अमित कुमार ने 1970 के दशक के प्रारंभ में बॉलीवुड में अपने संगीतमय सफर की शुरुआत की और संगीतकार राहुल देव बर्मन के निर्देशन में उन्हें बहुत सफलता मिली। आरडी बर्मन के साथ उनके सहयोग से 150 से अधिक हिंदी और बंगाली रचनाएं तैयार हुईं और अमित कुमार ने इनमें अपनी आवाज दी। उनके प्लेबैक करियर की चरम सफलता 1980 के दशक के उत्तरार्ध में मिली, जिसका मुख्य श्रेय प्रतिष्ठित गीतों को जाता है। 1987 में अपने पिता किशोर कुमार के निधन के बाद अमित पर अपने पिता की गायन शैली को दोहराने का बहुत दबाव था। अपनी अलग पहचान बनाने को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने गुणवत्तापूर्ण संगीत रचनाओं की कमी के विरोध में 1990 के दशक में के मध्य में नियमित पार्श्व गायन से संन्यास ले लिया।

शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का, अमित कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म बालिका बधू का एक ये गीत। और अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

श्रोताओं, दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के कारण मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड में मास्टर जी के नाम से मशहूर सरोज खान भारतीय सिनेमा की पहली महिला कोरियोग्राफर थी। अपने 40 साल से अधिक के शानदार करियर में उन्होंने 3000 से अधिक गानों को कोरियोग्राफ किया और उन्हें बेहतरीन डांस निर्देशन के लिए 3 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे।

इरशाद कामिल का लिखा गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब वी मेट, संगीतकार प्रीतम। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का निधन आज ही के दिन यानी 3 जुलाई 1996 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम कुलभूषण पंडित था और वो फिल्मों में आने से पहले मुंबई में पुलिस में काम करते थे। अपनी शानदार

काजल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, बोल थे साहिर लुधियानवी के, धुन बनाई थी रवि ने।

श्रोताओं, आज यानी 3 जुलाई को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कपड़े या जूट जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक प्रदूषण वर्तमान में हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस दिन को मनाने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान। एक साधारण प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल केवल 12 से

20 मिनट के लिए होता है, लेकिन इसे कचरे के ढेर या जमीन में पूरी तरह गलने में लगभग 1000 साल तक लग सकते हैं। ये थैलियां पानी में जाकर समुद्री जीवों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है और भूजल को जहरीला बनाने के साथ साथ नालियों की रुकावट का प्रमुख कारण है। इस दिन विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और पर्यावरणविद कपड़े या कागज के थैले बांटकर रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक करते हैं।

उदित नारायण की आवाज़ में आपने सुना फिल्म सिर्फ तुम का ये गीत। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। श्रोताओं, भारत में स्वास्थ्यवर्धक भोजन की बात आते ही सबसे पहले ताज़ा शब्द सामने आता है। हमारे यहाँ ये धारणा इतनी मजबूत है कि किसी भी वैकल्पिक आहार को ताज़े भोजन के बराबर मानने में झिझक होती है। फल, सब्जी, दूध, दही या मिठाई, हर चीज़ ताज़ा खाने की कोशिश रहती है। लेकिन बदलती जीवन शैली, शहरी भागदौड़, लंबी सप्लाई चेन और समय की कमी के दौर में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या फ्रोजन सब्जियां, फल वास्तव में ताज़ी सब्जियों के से कम पौष्टिक होते हैं। ये सवाल आज केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य वैज्ञानिकों और पोषण विशेषज्ञों के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है।

ताज़ी सब्जियों का हरा रंग, चमक और मिट्टी की खुशबू हमें आकर्षित करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक अध्ययन से 8 प्रकार के फल और सब्जियों का परीक्षण किया गया। एक समूह का को फ्रोजन किया गया और दूसरे को फ्रिज में रखा गया। एक सप्ताह बाद विटामिन सी और ई की मात्रा की जांच की गई। कुछ फ्रोजन नमूनों में पोषक तत्वों की मात्रा फ्रिज के नमूनों से अधिक थी।

मोनाली ठाकुर की आवाज़ में महाराज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे कौसर मुनीर, संगीतकार सोहेल सेन। और इसके साथ ही हमारा आज का नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: जमशेदपुर।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दिन के 12 बजने वाले हैं अब समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के

तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है प्यार।

प्यार एक ऐसा एहसास जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाता है। प्यार वो धागा है जो दो दिलों को विश्वास, सम्मान और अपनापन से जोड़ता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ जिंदगी मुस्कुराने लगती है। प्यार एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जिसमें स्नेह, विश्वास, सम्मान और अपनापन शामिल होता है।

सुल्तानपुरी का लिखा आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया गीत फिल्म थी एक लड़का एक लड़की। कच्चे धागे फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन नुसरत फतेह अली खान का।

शीर्षक गीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर से। आज का शीर्षक है प्यार। दिल तो पागल है, इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए। बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने, आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

क्योंकि इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत। आज का शीर्षक था प्यार, और इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं विदुषी तनिमा ठाकुर, राग है वृंदावन।

अभी आप सुन रहे थे राग वृंदावनी सारंग में विदुषी तनिमा ठाकुर का ख्याल गायन। इसके साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र भेजने वाले हैं अब समाचार प्रसारित।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों सहित तीन नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने तथा आवेदन की हार्ड कॉपी 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के CCL डकरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, CCL और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा कि इस विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहूंगा। मुझे याद है जब 2020 में चुनाव में मैं आया था, मैंने वादा किया था अब केंद्रीय विद्यालय खुलेगा और उसके बाद 2020 में मैंने प्रश्नकाल में लोकसभा में कई मरतबा इस केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवाज उठाई और उसके बाद ये आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय जरूर खुलेगा।
0: जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों सहित तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के SSP एहतशाम वकारिब ने बताया कि SIT का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
2: दो जो नीद बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 एंड 17 इयर्स के है, उन दोनों को है किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग तीन लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी उसको भी नियुक्त किया गया है जुनाइल जस्टिस के तहत।
0: इधर आदित्यपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भाजपा और समर्थित संगठनों के बंद का आज व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार समेत 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना है।
3: मशाल जुलूस के स्थल पर उतरे थे रोड पर और आह्वान किए थे आदित्यपुर बंदी का। लोग प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, हम लोग सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं।

0: शासन हर जगह नाकाम है, इस पर उनका नाकामी साफ साफ दिख रही है और हम लोग स्पष्ट और कड़े शब्द से मैं विरोध करता हूं। हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे, फांसी की सजा दे।
1: रांची में कांके राम मंदिर से प्रोजेक्ट भवन धुरवा तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त, जाम मुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्य योजना पर चर्चा की गई। अभियान के तहत सड़क, फुटपाथ, पार्किंग, ऑटो स्टैंड और वेंडिंग जोन का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार MBBS सीटें 176 से 250, PG सीटें 180 से 275 और सुपर स्पेशलिटी सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है, जिसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप भवन, हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, फैकल्टी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बोकारो जिले के तेलमुंगा गांव में एक बुजुर्ग दंपति और उनके दिव्यांग पुत्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवार की ओर से पेंशन नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में चकला कोल माइंस क्षेत्र के दो आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदला है। यहां बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की सेविका ने बताया कि निजी कंपनी के सहयोग से आंगनबाड़ी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
2: अभी जो है वैसा पहले नहीं था। अभी यहाँ पे टीकाकरण होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाता है। हमारी सेंटर में यानी मेरे एरिया में जितना भी लाभुक है टोटल जुड़े हुए हैं। संख्या लगभग यहाँ पे टोटल जनसंख्या का आधार पर 1560 है।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 511 अंक चढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 160 अंक ऊपर आकर 24,336 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। ताइक्वांडो। झारखंड ताइक्वांडो संघ और जिला ताइक्वांडो संघ के तहत 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता लोहरदगा में आज से शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 700 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम मैनेजर और रेफरी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त संदीप कुमार मीणा करेंगे और उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक और संघ अध्यक्ष सादिक अनवर रिजवी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला, 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से

शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों सहित तीन नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। प्रेम फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और नलिन दवे की आवाजों में। बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पिघलते फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात्रि 9:30 पर रूपकों के

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के मुख्य चैनल FM 102.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम ग्रंथ का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आज की शाम होने वाली है और भी खास,
1: क्योंकि 3 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे युवाणी लेकर आ रहा है ज्ञान, जागरूकता और मनोरंजन का जबरदस्त संगम।
0: वन संरक्षण से लेकर साइबर सुरक्षा तक, भारत की सांस्कृतिक विरासत से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरों तक,
1: हर पल होगा खास और हर बात होगी आपके काम की।
0: आपसे जुड़ेंगे हम, यानी कि मैं श्वेता
1: और मैं श्रीजा।
0: तो सुनिए आज युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 MHz पर।
2: गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म कोयला का गीत।

मनोहर दास और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म थी हीरो, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। योगेश के बोलों को संगीत से सजाया है निखिल विनय ने। एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म चोर और चांद का ये गीत।

0: फिल्म चोर और चांद के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 2 बजे हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी

0: have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
1: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना

0: शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।

0: इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के

निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बोल थे मनोज मुंतशिर के, धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने।
1: पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन

0: करता है। वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के मुख्य चैनल FM 102.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: आज की शाम होने वाली है और भी खास,
2: क्योंकि 3 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे युवाणी लेकर आ रहा है ज्ञान, जागरूकता और मनोरंजन का जबरदस्त संगम।
1: वन संरक्षण से लेकर साइबर सुरक्षा तक, भारत की सांस्कृतिक विरासत से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरों तक,
2: हर पल होगा खास और हर बात होगी आपके काम की।
1: आपसे जुड़ेंगे हम, यानी कि मैं श्वेता
2: और मैं श्रीजा।
1: तो सुनिए आज युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 MHz पर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्रशांत पांडे का लिखा, राम संपत का संगीतबद्ध किया फिल्म लापता लेडीज़ का ये गीत। इसके साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 कमांडो स्पेशल ब्रांच के 3 अधिकारी 3 वाहन लौटा दिए हैं। मंत्री ने 2 माह पूर्व एक सुरक्षा वाहन मांगा था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने जवाब देने के बजाय उनके काफिले से 1 गाड़ी कम करने का आदेश दे दिया। इसे अपमानजनक मानते हुए मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा वापस कर दी। अब वे बिना किसी बॉडीगार्ड के चल रहे हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यात्रा नुनवान पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से सुचारू रूप से चल रही है। सुबह सुबह बेस कैंप से निकले हजारों यात्री बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कठिन रास्तों पर पैदल यात्रा करते हुए देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए इस यात्रा को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से 5 संकल्प, स्वच्छता नियमों का पालन, स्थानीय उत्पादों पर 10% खर्च, पौधे उपहार में देने और राष्ट्र प्रथम की भावना को अपनाने का आग्रह किया। झारखंड हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत NHM NM कर्मियों के नियमितीकरण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अंतिम आदेश तक कर्मियों को नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। साथ ही नियमित वेतन देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा द्वारा बुलाए गए जमशेदपुर बंद को एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और आजसू पार्टी का पूरा समर्थन मिला है। विपक्षी दलों की इस एकजुटता के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बंद के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने बंद को सफल बताया है।
5: इन लोगों ने अपने ही दुकानों को बंद रखा है, स्कूल बंद ही है। हम लोग देख रहे हैं कहीं भी कोई दुकान खुला हुआ नहीं है और व्यापारी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। तो अभूतपूर्व बंद हुआ है, लोग अपने ही बंद के तौर पर अपना दुकान परेशान बंद करके रखे हैं। इसे सरकार को समझना चाहिए कि जमशेदपुर के लोग कितना दुखी है।
1: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद एनआईए ने मुख्य आरोपी अमन अंसारी और सयाम सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। इस हमले के तार दुबई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का संदेह है। आरोपियों पर यूपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद राज्य पुलिस ने जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 3 महीने से वहां नक्सलियों की कोई हलचल नहीं है और मानसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में 10,000 जवान तैनात हैं और बचे हुए 15 वांटेड नक्सलियों की घेराबंदी के लिए अभियान जारी है।
6: मॉस्किटो से जो प्रिवेंशन के जो भी एक्टिविटीज हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, दवाइयां उनको दे रहे हैं और इसका एक रोटेशन भी हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब रस्ता टाइप का कोई चीज नहीं रह गई है, सब तितर बितर हो गया है और कंटिन्यूस फोर्सेस की अभी भी मोटिवेशन उसी तरह से बनाए हुए है, चारों तरफ से फोर्सेस में घेर के रखा भी हुआ है, सूचना हम लोगों को मिल रही है और जल्दी भविष्य में अच्छा काम होने की उम्मीद है।
1: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है।

0: आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओ, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी, पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
8: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
8: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष।
7: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
8: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
7: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
8: अच्छा।
7: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
4: ये किस भाषा में है?
7: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
4: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
7: हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
4: अच्छा।
7: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
4: अच्छा।
7: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
8: अच्छा।
7: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
8: एपिग्राफ।
7: शाबाश निधि।
8: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
7: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
8: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
7: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
4: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
7: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का

0: अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ दीका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपरचाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं, पर हां इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वो राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से ही सतर्क थी।

0: रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: ए साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा है? हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोला लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
1: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:30 हुए हैं। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: जहाँ लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहाँ की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति, रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के मुख्य चैनल FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
2: आज की शाम होने वाली है और भी खास,
3: क्योंकि 3 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 बजे युवाणी लेकर आ रहा है ज्ञान, जागरूकता और मनोरंजन का जबरदस्त संगम।
2: वन संरक्षण से लेकर साइबर सुरक्षा तक, भारत की सांस्कृतिक विरासत से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरों तक,
3: हर पल होगा खास और हर बात होगी आपके काम की।
2: आपसे जुड़ेंगे हम, यानी कि मैं श्वेता
3: और मैं श्रीजा।
2: तो सुनिए आज युववाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए आज पहले सुनते हैं बाउल, सितार पर बजाई बाउल और कलाकार हैं

अभी आप सुन रहे थे सितार पर बजाई बाउल। कलाकार थी विदुषी कल्याणी रॉय। आइए अब सुनते हैं सितार पर भटियाली, कलाकार विदुषी कल्याणी रॉय।

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी कल्याणी राय का सितार पर बजाया भटियाली। इसके साथ ही हमारा आज का उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। दोपहर के 3:45 हुए हैं। झारखंड के लोकगीत थोड़ी ही देर में।
1: आज की शाम होने वाली है और भी खास,
2: क्योंकि 3 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 5 युवाणी लेकर आ रहा है ज्ञान, जागरूकता और मनोरंजन का जबरदस्त संगम।
1: वन संरक्षण से लेकर साइबर सुरक्षा तक, भारत की सांस्कृतिक विरासत से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरों तक,
2: हर पल होगा खास और हर बात होगी आपके काम की।
1: आपसे जुड़ेंगे हम, यानी कि मैं श्वेता
2: और मैं श्रीजा।
1: तो सुनिए आज युवाणी सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 MHz पर।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से लीजिए सुनिए झारखंड के लोकगीत।
3: झारखंड के लोकगीत के साथ मैं राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संताली लोकगीत। कलाकार हैं मिथुन सोरेन व साथी।

0: आप सुन रहे थे संताली लोकगीत, कलाकार थे मिथिन सोरेन और साथी। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य सरकार ने कैथी लिपि में लिखे पुराने भू अभिलेखों और खदियान को पढ़ने के लिए कैथी लिपि पाठ्य पुस्तक तैयार की है। विभाग के सचिव चंद्रशेखर के अनुसार वर्तमान में इस प्राचीन लिपि के जानकारों की कमी के कारण भूमि विवादों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। UIDAI ने आधार ऐप पर मुफ्त ईमेल अपडेट सेवा शुरू कर दी है। 1 जुलाई से 6 महीने के लिए जारी इस सुविधा से 2 दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने ईमेल अपडेट किया। इससे हर ऑथेंटिकेशन का रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आधार की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरायकेला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आज नगर पंचायत सरायकेला के इंदिरा टाणी मोहल्ले में घर घर जाकर SIR कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पदाधिकारियों को त्रुटि रहित और समयबद्ध कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला प्रशासन और CUD लाइफ इंश्योरेंस ने डुमरी के लवाबार में वाटर लिफ्टिंग सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सिरमी और ओखरागढ़ में नवनिर्मित विद्यालय भवन शिक्षा विभाग को सौंपे गए। इस दौरान स्कूल परिसरों में पौधारोपण भी किया गया। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के सियाटांड़ और लकड़ाटांड़ गांवों में छापेमारी कर 3 अशातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर DSP अमित कुमार के अनुसार इस कार्रवाई में अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। राज्य के 7 जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन, वर्षपात और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में ना जाने और सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 4:02 हुए हैं। श्रोताओं, कल यानी 2 जुलाई को महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मैच का आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारण के कारण हम आपको प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय लोक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम नहीं सुनवा सके। आइए अभी सुनते हैं प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय लोक सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
3: यह आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति। श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनोर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनोर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, PK नारायणन नंबियार और M माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,

तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है। मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूत का कथा संदर्भ इस प्रकार है। किरातम, रचनाकार मेलपतूर नारायण भट्टदिरी। कथा संदर्भ, दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यर कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यर कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, sangeetakar, choral arranger tatha vocal coach hai. Ve Akashwani ke A grade kalakar bhi hai. भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया। आज श्री अमल एंटनी चार सुगम गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्र

प्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टी एस राधाकृष्णन ने दिया है। श्री कृष्ण और राधा का संबंध मात्र लौकिक प्रेम नहीं है, बल्कि वह जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। आइए सबसे पहले राधा माधव के प्रेम का सुंदर चित्रण करने वाला एक गीत सुनते हैं।

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय लोक सुगम संगीत का अखिल भारत।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। समाचार मुख्यांश आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में हमारे रांची केंद्र से।

0: और हस्ताक्षर कर रसीद लें। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया। देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें OPD और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंध ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में आज मिशन परिवार विकास अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अगले 3 महीनों तक जिले के विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को परिवार नियोजन, सही उम्र में विवाह और बच्चों के बीच सुरक्षित अंतर रखने के प्रति जागरूक करेगा। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में कम अनाज देने वाले डीलर और मोहनपुर प्रखंड में म्यूटेशन मामलों में लापरवाही की जांच के लिए समिति गठित की है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए उन्होंने अवैध भूमि कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, शुक्रवार की आज की यह शाम बहुत ही खास है और इस शाम को और भी खास बनाएंगे कुछ विशेष जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर। दोस्तों, आप सभी को श्वेता
1: और श्रीजा का प्यार भरा नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में।
1: श्वेता, वीकेंड बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आज हम रेडियो पर लेकर आए हैं कुछ बेहद खास और जरूरी चर्चाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सफर।
0: दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई का यह पहला हफ्ता वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारी पहली चर्चा इसी से जुड़ी हुई है। वन संरक्षण आज जिस तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है, उसका दुष्परिणाम हम सब मौसम के बदलते मिजाज और बढ़ती गर्मी के रूप में भुगत रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, ये हमारी धरती के फेफड़े हैं। लेकिन इंसान अपनी सुख सुविधा के लिए इन फेफड़ों को ही काट रहा है।
0: जी श्रीजा, इस बार गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ना समय पर बारिश हो रही है और ना ही मौसम का कोई ठिकाना रहा है।
1: सही कह रही हैं आप श्वेता, जब हम जंगलों को उजाड़ेंगे तो प्रकृति तो अपना असर दिखाएगी ही। वनों की अंधाधुंध कटाई का ही यह सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है।
0: पर श्रीजा, विकास के लिए पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे, सड़कें और फैक्ट्रीज भी तो जरूरी है।
1: विकास जरूरी है श्वेता, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। वनों की कटाई से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जैसे वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
0: हाँ श्रीजा, वो तो ठीक है, पर क्या सिर्फ तापमान का बढ़ना ही इसका असर है?
1: नहीं श्वेता, इसके दुष्प्रभाव बहुत गहरे हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। वन्य जीवों के घर छिन रहे हैं, इसलिए जंगली जानवर अब गांवों और शहरों का रुख कर रहे हैं। हवा में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिससे सांस की बीमारियां फैल रही हैं।
0: सही कहा श्रीजा आपने, वन सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, हमारा जीवन भी है। यदि आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा और पानी के लिए तरसना पड़ेगा। वन संरक्षण अब सिर्फ एक नारा नहीं, हमारी जरूरत भी है।
1: श्वेता, मैं तो समझ गई। अब से मैं ना तो खुद पेड़ काटूंगी ना किसी को काटने दूंगी, बल्कि इस मॉनसून में 5 नए पौधे जरूर लगाऊंगी।
0: बिल्कुल श्रीजा, यही हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। पेड़ बचाएंगे तभी तो जीवन बचेगा।
1: आइए हम सब मिलकर हाथ मिलाएं, वनों की कटाई पर रोक लगाएं और धरती को फिर से हरा भरा बनाएं। क्योंकि जब सुरक्षित होगा वन, तभी सुरक्षित रहेगा हमारा कल।
0: अगर आज हम नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध हवा भी एक सपना बनकर रह जाएगी। इस वन महोत्सव पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसे बड़ा होने तक संभालेंगे भी, क्योंकि पेड़ है तो हम है। चलिए जानते हैं शहर के युवा से वन संरक्षण पर उनकी क्या राय है।
2: वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और लोगों को वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। हमें अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी नियमित देखभाल भी करनी चाहिए। साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने, वनों की रक्षा करने और प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। आइए वन महोत्सव के इस अवसर पर हम सभी मिलकर हरियाली बढ़ाने और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण बनाने में अपना योगदान दें।
3: नमस्कार, मेरा नाम सुमन है और मैं जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। वन महोत्सव प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। यह प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पेड़ न केवल हमें शुद्ध वायु, फल, औषधियाँ और छाया प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने, वर्षा बढ़ाने तथा वन्य जीवन को संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते प्रदूषण और वनों की कटाई को देखते हुए वन महोत्सव का महत्व और भी बढ़ चुका है। हमें केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखकर एक हरित और स्वच्छ भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।
0: दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी चर्चा की तरफ। जानती हैं श्रीजा, आज सुबह सुबह जब मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला तो एक मीम देखा। स्मार्टफोन आने से इंसान भले ही स्मार्ट हुआ हो या ना हुआ हो, पर फोन बहुत चालाक हो गया है। बात तो हंसने वाली थी, पर गहराई में जाए तो यह बहुत ही गंभीर विषय है।
1: मेरे युवा दोस्तों, आज हमारा उठना, बैठना, पढ़ना और यहाँ तक कि प्यार भी डिजिटल हो चुका है। लेकिन इस चमक दमक वाली स्क्रीन के पीछे एक अंधेरी दुनिया भी है, जहाँ हर कोने पर साइबर अपराधी जाल बिछाकर बैठे हैं। आज का युवा सबसे ज्यादा इनका निशाना बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम बिना सोचे

0: जी समझे क्लिक कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा शुजा आपने। आज की युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया में जी रही है, सोशल मीडिया से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और शॉपिंग तक सब कुछ एक क्लिक पर हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक भरी दुनिया में सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। आए दिन साइबर फ्रॉड, पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हमारी युवाओं से बस यही गुजारिश है कि इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। अपनी निजी जानकारी किसी से साझा ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें। याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है।

0: दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या याद आता है? मम्मी की चाय?
1: नहीं बाबा, अपना चमकता हुआ स्मार्टफोन।
0: सही कहा आपने श्वेता, आज हमारी पूरी दुनिया इस छोटी सी स्क्रीन में सिमट गई है। रील्स, चैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग और शॉपिंग, मजा तो बहुत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल समंदर में कई शार्क भी तैर रही हैं?
1: तो मेरे युवा साथियों, कान खोल कर सुनिए ये चार गोल्डन रूल्स। अनजान वीडियो कॉल्स कभी ना उठाए, कैमरे पर उंगली रख ले या उसे तुरंत ब्लॉक करे, लालच से बचे, घर बैठे 5,000 कमाए या लोन ऐप के चक्कर में अपनी निजी जानकारियां शेयर कभी ना करे, सोशल मीडिया पर हर बात पब्लिक ना करे, आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताना जरूरी बिल्कुल नहीं है। 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखे, आपका पासवर्ड ही आपका डिजिटल ताला है। श्रीजा, अगर किसी के साथ ऐसा धोखा हो जाए तो वो क्या करे?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है श्वेता, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके साथ कोई साइबर कॉल या ब्लैकमेलिंग होती है तो तुरंत www.cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें या नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
1: याद रखिए दोस्तों, तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, हमें उसका गुलाम या शिकार नहीं बनना है। डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करें, लेकिन पूरी सावधानी से, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। चलिए जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता अदिति त्रिपाठी का इस विषय पर क्या कहना है।
2: आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो साइबर क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो इस स्थिति में अगर आप किसी साइबर क्राइम का सामना करते हैं, आपके साथ कुछ होता है, पहले तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं गवर्नमेंट प्रणाली में, इनको अप्रोच किया जा सकता है बहुत ही एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो गवर्नमेंट ने एक तो नेशनल टोल फ्री एक हेल्पलाइन बनाई है जिसका नंबर है 1930। उस हेल्पलाइन को आप कॉल करेंगे, वो आपकी स्टेट पुलिस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और फिर कोई आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए मौजूद हो जाएगा विद इन सेकेंड। तो आपको ज्यादा वेट भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी साइबर क्राइम अगर होता है आपके साथ, तो यूजली ये क्योंकि फोन या ईमेल के माध्यम से क्राइम होते हैं, तो उसके काफी आपके पास सबूत रहते हैं, तो उन सबूतों को आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको कहीं ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। जब आप 1930 पे कॉल करेंगे, वो आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। यूजली वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिस लिंक पे जाके आपको जितने भी सबूत हैं वो जाके देने होते हैं, एंड देन वो एक फॉर्मल कंप्लेंट होती है। इसके बाद आपको कोई फॉर्मल और औपचारिक कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक तरीका है, एक साइबर क्राइम के लिए एक प्रॉपर वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। इस पर भी आप रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, उसका जो भी एविडेंस आपने स्क्रीनशॉट अगर लिया है, आपने अगर कोई यूपीआई पोर्टल के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन दिया है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी, आपका बैंक स्टेटमेंट इत्यादि, जो भी आपके केस से जुड़े जितने भी सबूत आपके पास होंगे, आपको वो जाके उधर जमा करने होंगे उस लिंक पे ऑनलाइन, एंड उसके बाद इस केस की कार्यवाही होगी। अगर मान लीजिए आपको इस चीज को करने में दिक्कत आ रही है, या आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी बट आपको उसके बाद

0: कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्या पुलिस ने कदम उठाए हैं, तो इसी वेबसाइट पे cybercrime.gov.in पर ही आप जाएंगे, वहाँ पे हर स्टेट के एक नोडल ऑफिसर हैं जो डेडिकेटेडली डील करते हैं साइबर क्राइम के ऑफेंसेस के साथ। उनकी सारी डिटेल्स, उनका क्या नाम है, उनका क्या पोजीशन है, क्या किस रैंक के ऑफिसर है वो, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनके ऑफिस का एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। किसी भी माध्यम से आप उन नोडल ऑफिसर को, आपके स्टेट के जो नोडल ऑफिसर है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एंड देन फर्दर वो आपको गाइड करेंगे कि क्या स्टेप्स लिए जा सके हैं। तो श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका किसी ने फायदा उठाया है। साइबर क्राइम्स बहुत रैम्पेंट तौर पे हो रहे हैं, बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत उनकी संख्या बढ़ गई है, तो इस केस में आपको बस जल्द से जल्द 1930 पे कॉल करना है या फिर cybercrime.gov.in पर इसकी कंप्लेंट करनी है, और जरूर करनी है। ये नहीं कि मान लीजिए थोड़ा ही नुकसान हुआ है या फिर हम बाद में करेंगे, ये ना सोचकर तुरंत ही, बिकॉज ये बहुत ही इजी साधन है, इसके इस्तेमाल से अपनी कंप्लेंट आप डाल सकते हैं।
1: चलिए श्वेता, अब बात करते हैं एक ऐसी खूबी की जो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है, हमारा प्यारा भारत जो विविधताओं का देश है। जब हम भारतीय संस्कृति की दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, पहनावा और खान पान बदल जाता है, लेकिन इस विविधता के बीच जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है हमारी एकता। अलग अलग त्योहार, अलग अलग रीति रिवाज, फिर भी एक धड़कन, एक देश, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। हमें अपनी इस अनमोल संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।
2: श्रीजा, आज दिल ने कहा कि क्यों ना उस मिट्टी की बात की जाए जिसकी खुशबू दुनिया में सबसे जुदा है। एक ऐसा देश जहाँ की हवाओं में भी मोहब्बत और तहजीब खुलती है।

0: हाँ श्वेता, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तिरगी में भी जो रोशन है वो दिया है भारत। मजहब अलग है पर सबका खुदा है भारत। सतरंगी धागों से बुना एक मखमली लिबास है। हाँ, विविधताओं से सजा मेरा प्यारा देश भारत, मेरा प्यारा देश भारत। जी हाँ, जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो आंखों के सामने त्योहारों की एक लंबी कतार आ जाती है। हमारे देश में हर दिन एक उत्सव है, पूरब का छठ पर्व हो या पश्चिम का गणेश उत्सव, उत्तर की लोहड़ी हो या दक्षिण का पोंगल, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हमारे दिलों को जोड़ने वाले पुल है।
1: जरा सोचिए श्रीजा, दुनिया का ऐसा कौन सा कोना होगा जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती होंगी, जहां हर 50 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और बात करने का अंदाज बदल जाता होगा। लेकिन कमाल देखिए, भाषा चाहे कोई भी हो, जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से मिलता है तो भाषा की दीवारें टूट जाती है और सिर्फ अपनेपन की भाषा बचती है।
0: हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। हमने सिर्फ अपनी विविधताओं को स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया है। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे का शब्द और चर्च की प्रार्थना, ये सब मिलकर भारत का वो संगीत बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और सुनाई नहीं देता।
1: तो दोस्तों, आज गर्व कीजिए कि आप इस महान संस्कृति का हिस्सा है। अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपनी पहचान पर नाज कीजिए और साथ ही दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि यही तो असली भारत है। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं स्वदेश फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके गीतकार है जावेद अख्तर और गाया है ए आर रहमान ने।

0: श्वेता, इसी के साथ चलते हैं शो के आखिरी हिस्से में। वक्त हो चला है देश दुनिया की समसामयिक गतिविधियों यानी आज की बड़ी हलचलों पर एक नजर डालने का।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026 है।
0: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल ने पीओ और एसओ के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 जुलाई 2026 है।
1: अभिषेक शर्मा का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय टीम के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के उग्रवाद की कड़ी निंदा की है।
1: मॉनसून तेजी से आगे बढ़ते हुए दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के हिस्सों में पहुंच गया है।
0: भारतीय रेलवे ने देश में रेल कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है।
1: भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें AI और एनर्जी रेजिलियंस पर संयुक्त बयान जारी किया गया।
0: बिजली क्षेत्र के लिए कोयला मंत्रालय ने निरंतर प्रयासों से अप्रैल 2026 में कुल कोयला आयात में लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू कोयले की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है।
1: न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
0: राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट ग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाली हेल्पलाइन नंबर 14490 और डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया है।
1: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के संचयी कोयला उत्पादन में 5.35% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको आज बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी।
0: अपनी दोस्त श्रेजा
1: और श्वेता को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे नई सोच, नए विषय, नई ऊर्जा के साथ।
0: नमस्कार।

युववाणी, ये था युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम कल कारखाने आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के मुख्य चैनल FM 102.4 MHz और न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर सुना जा सकता है।

FM के 102.4 MHz पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आप लोगों को श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के महत्व के विषय पर जानकारी देने के लिए एक वार्ता सुनवाएंगे, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर भी जानकारी देंगे और कुछ फिल्मी गीतों के माध्यम से आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे। पर इन सबसे पहले श्रोताओं, हम आज चर्चा करते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्यों जरूरी है ई श्रम कार्ड। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हमारे मेहनतकश श्रमिक हैं। खेतों में काम करने वाले कृषि श्रमिक, निर्माण स्थलों पर दिन रात मेहनत करने वाले मजदूर, रिक्शा और ठेला चालक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी विक्रेता, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, दर्जी, मछुआरे और अनेक स्वरोजगार से जुड़े लोग, ये सभी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं। देश की प्रगति में इनका अमूल्य योगदान है, लेकिन लंबे समय तक इन श्रमिकों का कोई राष्ट्रीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। यही कारण है कि कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को समय पर नहीं पहुंच जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद श्रमिक को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड पर 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN अंकित होता है, जो पूरे देश में उसकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। अब प्रश्न यह है कि ई श्रम कार्ड क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनका राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करता है। इससे सरकार को श्रमिकों की वास्तविक संख्या और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। परिणाम स्वरूप भविष्य में बनने वाली कल्याणकारी योजनाएं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। दूसरा, किसी प्राकृतिक आपदा, महामारी या अन्य आपातकालीन स्थिति में सरकार पात्र श्रमिकों की सहायता अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ई श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की सुविधा मिलती है। समय समय पर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्रता के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। श्रोताओं, यदि आप असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और आपकी आयु निर्धारित पात्रता के अंतर्गत है तो ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। इसके लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी आवश्यक होती है। पंजीकरण स्वयं ऑनलाइन या अपने निकटतम जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां जाकर कराया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात, ई श्रम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। इसलिए किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या धोखाधड़ी से सावधान रहें और केवल अधिकृत सरकारी माध्यमों से ही पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराएं। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि ई श्रम कार्ड केवल एक कार्ड नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसके आपके आसपास कोई पात्र श्रमिक है तो उसे भी ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। जागरूकता ही सशक्त समाज की पहचान होती है। श्रोता मित्रों, अब कार्यक्रम को जारी

रखते हुए आइए आप लोगों को सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। गीत लिखा है फैज अनवर ने और इसे धुन से सवारा है नदीम श्रवण ने। आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

0: इस गीत के बाद कार्यक्रम का रुख हम एक बार फिर से वार्ता की ओर करते हैं और आपको सुनवाते हैं संजय कुमार की वार्ता। विषय है अनौपचारिक शिक्षा का जो महत्व है वो श्रमिकों के लिए कितना है, आइए इस विषय पर वार्ता सुनते हैं।
1: गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सबसे ऊंची और अच्छी शिक्षा वह नहीं है जो केवल सूचना दे, बल्कि उसे जीवन में सभी स्तरों पर सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वह हजारों की संख्या में स्नातक और स्नातोत्तर शिक्षा प्राप्त युवकों की फौज तैयार करने वाली एक फैक्ट्री मात्र है। वास्तव में ऐसी शिक्षा के बावजूद अधिकांश लोग शिक्षित अनपढ़ रह जाते हैं। वे जीवन मूल्यों जैसे अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को भूलने लगते हैं। पैसा कमाने की धुन में वे समाज में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। इस कारण परिवारों के बिखरने और समाज के विघटन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। आज आवश्यकता ऐसी नागरिक तैयार करने की है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हुए मानव मूल्यों का आदर भी करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु औपचारिक शिक्षा पद्धति का जन्म हुआ। वस्तुतः औपचारिक शिक्षा के हमारे सभी तरीके समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। औपचारिक शिक्षा में अनेक पाबंदियां हैं जो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोकती है। अनेक बच्चे, युवा और प्रौढ़ अपनी सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार या गांव से बाहर जाकर काम करने के लिए मजबूर हैं। इस कारण वे औपचारिक शिक्षा के ढांचे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा सभी तरह की औपचारिकताओं को तोड़कर शिक्षा देने की पद्धति है। इसमें बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग अपने पास उपलब्ध समय, साधन और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने ही परिवेश में शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में 5 मुख्य तत्व होते हैं जो कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं। ये हैं अध्यापक, शिक्षार्थी, शिक्षण सामग्री, शिक्षा पद्धति और परिवेश। औपचारिक शिक्षा में इन तत्वों में काफी सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास होता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व परिवेश पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण शिक्षा की चाह रखने वाले लोग अपने परिवेश से कटकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। औपचारिक शिक्षा में परिवेश पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि पर पूरा ध्यान दिया जाता है। उन्हें इस प्रकार रोचक ढंग से शिक्षित करने का

प्रयास होता है कि वे और अधिक शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित हों। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने पर अधिक जोर दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा को अपनाने के लिए प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाती है जहां अधिक संख्या में लोग पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी बहुल इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कम आबादी वाले क्षेत्र और गंदी बस्तियों को शामिल किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक जोर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों और महिलाओं की शिक्षा पर दिया जाना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे लोगों के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं। उनमें उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके समुदाय में उन्नति और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र कारखानों और उद्योग धंधों में कार्यरत कर्मचारियों का तकनीकी स्तर और विशेषता बढ़ाने का हो सकता है। ऋणियों और सेवानिवृत्त बुजुर्गों की जानकारी बढ़ाने वाले कार्यक्रम भी तैयार किए जा सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य कार्य और शिक्षा में तालमेल बढ़ाना है। इस शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं: नीरस शिक्षा के स्थान पर सरस ढंग से सिखाने पर जोर, एक दूसरे से सीखने की क्षमता पर अधिक ध्यान, शिक्षा के दौरान भी विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन, सहभागितापूर्ण शिक्षण का वातावरण, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप पढ़ाई के कार्यकलापों में विविधता। अनौपचारिक शिक्षा के लाभ इस प्रकार हैं: पहला, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से लाखों बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा दी जा सकती है जो अभी औपचारिक शिक्षा के दायरे से दूर है। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा जनतांत्रिकरण का प्रमुख माध्यम है। इस पद्धति में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अपने ज्ञान और अनुभव को निर्भीकता से बांट सकते हैं। तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा हर स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकती है। अभी आदिवासी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में औपचारिक शिक्षा के प्रबंध में कठिनाइयां हैं। अनौपचारिक शिक्षा वहां आसानी से सभी को उपलब्ध कराई जा सकती है। और चौथा, जो लोग अपनी पढ़ाई के किन्हीं कारणों से बीच में छोड़ चुके हैं एवं अभी कल कारखाने इत्यादि में श्रमिक वर्ग में कार्यरत हैं, लेकिन इसकी सीमाओं पर भी चर्चा करें तो अनौपचारिक शिक्षा पद्धति औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए नियमित और व्यवस्थित क्रम में पढ़ाई आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा की सफलता अच्छे शिक्षकों और परिवेश के अनुरूप उसे ढाल सकने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं पर निर्भर है। इस शिक्षा पद्धति में सम्मिलित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और जन सेवकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। रेडियो के कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में शिक्षा प्राप्त करने का फैसला कर सकता है। इसमें बच्चे और बड़े साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समय का निर्धारण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जब लोगों को कामकाज से फुर्सत मिलती है तभी वे पढ़ाई के लिए आ जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ज्ञान की बातें और अनुभव से जोड़कर देखने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें जन सहभागिता पर आधारित पारस्परिक चर्चा और बातचीत पर आधारित शिक्षा पर जोर रहता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की सीमाओं को लेकर विशेषज्ञों में आम राय कभी नहीं रही। प्रारंभ में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से बाहर शिक्षा सीखने और प्रशिक्षण की गतिविधियों को अनौपचारिक शिक्षा के दायरे में रखा गया। आजकल अनौपचारिक शिक्षा को असंपन्न समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को माना जा रहा है। साथ ही यह शिक्षा विशेष वर्ग के लोगों की चिंताओं से भी जुड़ी है। विशिष्ट उद्देश्यों पर केंद्रित होने के

0: अलावा संगठन और शिक्षण पद्धति में भी लचीलापन इसकी विशेषता है। इस लचीलेपन के कारण साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, निरंतर शिक्षा और अन्य कई प्रकार की शीर्षकों वाली शिक्षा प्रणालियां अनौपचारिक शिक्षा में समाहित हो रही है। इस तरह अनौपचारिक शिक्षा अपनी विशेषताएं तथा साथ ही साथ सीमाएं भी हैं, परंतु यह निश्चित रूपेण कहा जा सकता है कि रोजगार एवं काम धंधा प्राप्त लोगों हेतु यह एक वरदान की भांति है।
1: श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का महत्व, इस विषय पर अभी आप श्रोता श्री संजय कुमार की वार्ता सुन रहे थे। और अब हम चर्चा करते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान, रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक हर क्षेत्र की अपनी विशेष पहचान है। फिर भी इन सभी विविधताओं को जोड़ने वाला सूत्र है हमारी भारतीयता। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। इसका मुख्य लक्ष्य है कि देश के नागरिक एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, परंपराओं और जीवन शैली को समझे तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की जोड़ी बनाई जाती है। ये राज्य एक दूसरे की भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, भोजन और पर्यटन स्थलों की जानकारी साझा करते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विभिन्न संस्थानों में इससे जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे युवाओं को देश की विविधताओं को नज़दीक से जानने और समझने का अवसर मिलता है। जब हम किसी दूसरे राज्य की भाषा के कुछ शब्द सीखते हैं, वहाँ के त्योहारों को समझते हैं या उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, तब हम केवल जानकारी ही प्राप्त नहीं करते बल्कि दिलों के बीच की दूरियाँ भी कम करते हैं। यही भावना भारत को और अधिक मजबूत बनाती है। आज के डिजिटल युग में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रासंगिकता बढ़ गई है। सोशल मीडिया और संचार के आधुनिक साधनों के माध्यम से हम देश के किसी भी कोने की संस्कृति से जुड़ सकते हैं। ये पहल हमें बताती है कि विविधता हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा उसकी विविधताओं में बसती है। यदि हम एक दूसरे की परंपराओं और संस्कृतियों का सम्मान करेंगे तो देश में भाईचारा, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता तथा आपसी भाईचारा अधिक मजबूत होंगे। हम सभी का दायित्व है कि हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को समझें, उनका सम्मान करें और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। जब हर भारतीय ये महसूस करेगा कि पूरे देश की संस्कृति उसकी अपनी संस्कृति है, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरी तरह से साकार होगा। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि भाषा, क्षेत्र, धर्म और संस्कृति के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएंगे और भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। और अब कार्यक्रम का रुख एक बार फिर से फिल्म संगीत की ओर करते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लोफर का ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कल कारखाने, ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: साथ में विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal said India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap and is regularly reviewed. The Defence Acquisition Council

झारखंड के लोकगीत के साथ मैं राजेश जोहार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उरांव लोकगीत। कलाकार हैं सोमराय तिर्की।

0: सुमरा तिर्की और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे उड़ाव लोकगीत। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिंधु जलसंधिः स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पवित्रा अमरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहुताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2000+ जाता। सहस्रशः जनाः सम्प्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्यां आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरंतर पोषकत्वात् सिंधु जलसंधिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मंत्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः प्रावोचत् यत् सिंधु जलसंधेः विषये भारतस्य नीतिः सर्वथा स्पष्टा अस्ति। तेन गदितं यत् पाकिस्तानेन प्रथमतः आतंकवादं प्रति स्वकीयं समर्थनं सर्वथा परित्यक्तव्यम्। तीस्ता नदी समग्र प्रबंधन पुनरुद्धार परियोजनायाः विषये श्री जयसवालेन स्पष्टीकृतं यत् बांग्लादेशे विकास परियोजनाभ्यः दीयमाना भारतस्य सहायता कञ्चन पारस्परिक सम्मति प्राप्त मार्गचित्रमाधृत्य वर्तते यस्य नियतकाले समीक्षा विधीयते। तेन प्रोदीरितं यत् तीस्ता नदी परियोजनायां भारतस्य चिन्तनं पूर्वमेव बांग्लादेशं प्रति ज्ञापितं। सहैव भारतं तीस्ता विषये स्वकीय चिन्तने सर्वान् सम्बद्ध घटनाक्रमान् संयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवर्षं प्रवर्तमानां पवित्र अमरनाथ यात्रां राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायं व्यपादिशत्। तेन प्रोदीरितं यत् भगवतः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यमिदं दर्शनं कोटिशः श्रद्धालूनां जीवने एकः अविस्मरणीयः अत्यन्तं मंगलमयश्चानुभवो वर्तते। अनेन सहैव सः जम्मू कश्मीर क्षेत्रे वार्षिक यात्रां कुर्वद्भ्यः तीर्थयात्रिभ्यः हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयत्। श्रद्धालून् प्रति प्रेषिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा अस्यां पावन यात्रायां पञ्च संकल्पानां परिपालनार्थम् अभ्यर्थना विहिता। एते संकल्पाः सन्ति शुचितायाः सर्वथा संरक्षणं सुरक्षा नियमानां निष्ठापूर्वकम् अनुपालनम् स्थानीय स्वदेशीयोत्पादनानां संवर्धनम् रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्यै भ्रात्रेवा पादपस्य उपहार प्रदानम् तथा विकसित भारतस्य राष्ट्रिय संकल्पाय स्वयोगदानम्। अद्य प्रातःकालात् विधिपूर्वकम् आरब्धा इयं श्री अमरनाथ यात्रा नूनवान पहलगाम तथा बालताल इति द्वाभ्यामेव मार्गाभ्याम अतीव सुचारु रूपेण निर्बाधं च अग्रे प्रवर्धते। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण न्यगादीत् यत् भारत फ्रांसयोः रणनीतिक संधिः शाश्वत दृढ़ नवोन्मेष प्रेरित विकासस्य दिशि सर्वथा सर्वोत्कृष्टं स्थानं भजते। पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं संबोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव परिवर्तनानां च कारणात् वैश्विक अर्थव्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते। वित्तमंत्रिणा फ्रांस देशस्य वाणिज्य नेतारः निवेशकश्च विकसित भारतमिति राष्ट्रिय संकल्पस्य महायात्रायां भारतस्य सहयात्रिणः भवितुं सोत्साहम् आहूताः।

0: विदेशमन्त्रालयेन सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे प्रचलितस्य चिकित्सा कार्यस्य चित्राणि प्रसारयता सम्मुलिखितम् यत् भारतीय सेनाक्षेत्र चिकित्सालयः प्रभावितेषु समुदायेषु निरन्तरं चिकित्सा सेवाः प्रयच्छति। वेनेजुएला स्थितेन भारतीय दूतावासेन कथितं यत् अस्मिन् दक्षिण अमेरिका राष्ट्रे भारतस्य व्यावसायिक सेवा गुणवत्तायाः जनसामान्यैः भूरिशः प्रशंसा कृता। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः डेल्सी रोड्रिगेज इत्येषा सप्तदिवसीयस्य राष्ट्रिय शोकस्य घोषणां कृतवती। अनेन भीषण भूकम्पेन मृतानां संख्या 95+500 संजाता। पश्चिम बंगाल विधानसभाया नवनिर्वाचितानां सदस्यानां कृते आयोजितस्य द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य अद्य कोलकातायाः न्यू टाउन कन्वेंशन केन्द्रे लोकसभाध्यक्षेन ओम बिरला इत्यनेन विधिवत् उद्घाटनं विहितम्। उद्घाटन समारोहात् प्रागेव लोकसभाध्यक्षाय ओम बिरला वर्याय गार्ड ऑफ ऑनर इति राष्ट्रिय सम्मान प्रणामः समर्पितः। उद्घाटन सत्रं संबोधयन् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रावोचत् यत् विधायकानां कृते विधि निर्माण प्रक्रियायाः तन्त्रस्य च गभीर ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा पश्चिम मध्य प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टेः रक्त संचेतना प्रसारिता। अनेनैव सह छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश विदर्भ क्षेत्रेषु झंझावातस्य विद्युत प्रपातस्य चापि संभावना प्रकटीकृता। विभागानुसारं श्वः यावत् उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक जम्मू कश्मीर लद्दाख तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना पूर्वोत्तर राज्येषु अपि अत्यधिक वृष्टिः भवितुं शक्या। फीफा विश्व चषके कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। इतिहासे चतुर्वारं प्रागुपान्त्य चरणे गन्तुं स्विट्जरलैंड दलम् आगामी मंगलवासरे अस्मिन्नेव स्थाने कोलंबिया अथवा घाना देशेन सह स्पर्धिष्यति। अन्यस्मिन् द्वन्द्वे स्पेन देशेन कैलिफोर्नियायाः लॉन्स एलेंजिस क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलं 3-0 इत्यनेन पराभूय राउंड ऑफ 16 चक्रे स्वस्थानं सुरक्षितम्। अपरत्र कैनेडा देशस्य टोरेंटो नगरे प्रवृत्ते द्वन्द्वे पुर्तगाल देशः अपि क्रोएशिया दलं 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्राप्तवान्। मंगलवासरे डलास नगरे राउंड ऑफ 16 चक्रे पुर्तगाल दलं स्पेन देशं सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइयों, थोड़ी ही सही लेकिन बारिश की शुरुआत तो हुई। निश्चित है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली होगी और आप अपने रोजाना के कार्यों को खुशी खुशी कर रहे होंगे। कार्यक्रम कृषि जगत के आज के सफर में मैं हूं आपका वही जाना पहचाना दोस्त राजेश जोहार।

आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक प्रगतिशील किसान से बातचीत, जो आपको नर्सरी लगाने और बागवानी करने के तरीके बताएगी। साथ ही होगी आपसे ढेर सारी बातें और होगा आपके लिए लोक गीत। लेकिन करते हैं आगाज कुछ जरूरी बातों के साथ। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि झारखंड में मछली पालन एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है? यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक जल संसाधन मछली पालन के लिए बहुत अच्छे हैं। सरकार भी राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा और मदद दे रही है। झारखंड के तालाबों, बांधों और नदियों में मुख्य रूप से मछलियाँ पाली और पकड़ी जाती है। यहाँ रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प और देसी मांगुर, जो झारखंड की राजकीय मछली भी है, काफी लोकप्रिय है। रोहू तालाब के बीच के हिस्से में तैरती है और पानी के पौधे खाती है, जबकि कतला बहुत तेजी से बढ़ने वाली मछली है और तालाब के ऊपरी सतह पर रहती है। सिल्वर कार्प को आमतौर पर रोहू, कतला और मृगल प्रजाति की मछली के साथ पाला जाता है। इसे मिश्रित मछली पालन कहते हैं। जहाँ तक देसी मांगुर की बात है, यह मछली बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकती है और बाजार में बहुत ज़्यादा भाव में बिकती है। कृषक बंधुओं, यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सही आकार का तालाब बनाएं, जहां पानी आसानी से भरा जा सके। अगर आपके पास खेत में बड़ा तालाब नहीं है तो आप सरकारी मदद से खेत में डोभा खोद सकते हैं या बायोफ्लॉक तकनीक से प्लास्टिक के टैंक में भी मछली पालन कर सकते हैं। मछलियों के अच्छे विकास के लिए पानी का पीएच मान 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। साथ ही पानी में ऑक्सीजन का स्तर भी सही रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अच्छी और स्वस्थ मछलियों के बच्चे बीज के रूप में चुनें। तालाब की प्राकृतिक घास के अलावा मछलियों को प्रोटीन से भरा कृत्रिम खाना आप दे सकते हैं, जिससे मछलियाँ जल्दी बड़ी होती है। यदि आप मछली पालन वैज्ञानिक तरीके से सीखना चाहते हैं तो अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या झारखंड फिशरीज पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

कृषक मित्रों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्लास्टिक किस कदर हमारे सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसके बारे में लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। यह दिन कई मायनों में बहुत ही खास है। हम सभी को प्लास्टिक पॉल्यूशन के गंभीर खतरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह हमारे वर्तमान को तो खराब कर ही रहा है, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हमारे जलाशयों को दूषित करने का काम करती है। रोजाना कई सारे प्लास्टिक की वस्तुएं महासागरों, नदियों और झीलों में फेंके जाते हैं, जिससे ये पानी को ही दूषित नहीं करते बल्कि उसमें रहने वाली जलीय जंतुओं के लिए भी बेहद खतरनाक है। प्लास्टिक की थैलियों को नष्ट होने में तकरीबन 500 साल तक का समय लग सकता है। दोस्तों, प्लास्टिक बैग फ्री को विश्व स्तर पर मनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य लोगों को इसके खतरों से वाकिफ कर उन्हें इसके इस्तेमाल से रोकना है। बहुत छोटी छोटी कोशिशों से आप प्लास्टिक को अपने लाइफस्टाइल से आउट कर खुद ही सुरक्षित रह सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, जिसकी शुरुआत प्लास्टिक की जगह जूट, कपड़ों और कागज की थैली के उपयोग से कर सकते हैं।

श्रोताओं, बागवानी किसे नहीं पसंद है। यदि आप अपने आसपास बागवानी करना चाहते हैं और नर्सरी लगाना चाहते हैं तो ये जो भेंटवार्ता आप सुन रहे हैं ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए सुनते हैं एक प्रगतिशील किसान से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं पुष्पलता सोई। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, उनका झुकाव बागवानी की ओर है। आइए।

0: उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके शौक के बारे में और बागवानी के बारे में तमाम जानकारियां हम हासिल करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
1: मैं पुष्पलता सोय, आप सभी झारखंड वासी को मेरा जोहार, नमस्कार।
0: फिलहाल आप एक प्रगतिशील किसान के रूप में कार्य कर रही हैं और अपना नर्सरी और बागवानी के क्षेत्र में काफी कुछ करती हैं। आपका बागवानी की ओर झुकाव किस तरह बढ़ा?
1: बचपन से ही मैं फूल पौधा से बहुत लगाव रखती थी, इस कारण मैं 2017 में अपनी एक नर्सरी जो कि सीआरपी कैंप सुंदर नगर 106 बटालियन के नजदीक मेरी एक नर्सरी में हर किस्म के फूल फल, सीजन फूल, इंडोर आउटडोर सो पौधा, कैक्टस पौधा, औषधीय पौधा भी मिलते हैं और खुद खाद को भी बनाती हूँ।
0: अलग अलग सीजन में किस तरह के फूलों का आप बीज लगाती हैं और पौधा तैयार करती हैं?
1: जैसे कि सीजन पौधा डलिया, डंठस, गेंदा, इंप्रेशन।
0: अच्छा,
1: पहले तो मैं उसका चारा डालती हूँ
0: जी,
1: और जब चारा छोटे छोटे करीब एक इंच की हो जाती है फिर हम छोटे वाला मिट्टी वाला गमला में शिफ्ट करते हैं।
0: अच्छा।
1: सबसे पहले तो लोग गुलाब, डलिया, डंठस, गेंदा, इंप्रेशन ऐसे पौधों को ज्यादा लोग लाइक करते हैं, पिटूनिया।
0: और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति पौधा ले जाता है तो आरंभ में उसे क्या सावधानी बरतनी पड़ती है या फिर किस तरह से पौधों को लगाए ताकि उसमें अच्छा फूल वो प्राप्त कर सके?
1: नर्सरी से पौधे तो बहुत कोई ले जाते हैं अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन लोग उसको केयर करने नहीं जानते हैं। जब पौधा लगाते हैं तो मैक्सिमम वीकली मतलब सप्ताह में एक दिन जरूर उसमें खाद डालना चाहिए। अगर सप्ताह में एक दिन हम खाद डालते हैं तो पौधा हरा भरा रहेगा।
0: अच्छा।
1: और समय से फूल खिलेगा। अगर हम उसमें खाद नहीं डालेंगे तो छोटा फूल खिलेगा, बड़ा फूल नहीं खिलेगा।
0: तो किस तरह का खाद तैयार करती है और उसमें किस किस चीजों का उपयोग आप करती हैं?
1: जैसे कि हम जैविक खाद खुद बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: सूखा पत्ते को इकट्ठा करते हैं और जैसे सूखा पत्ता को सुखा करके उसको पाउडर करते हैं और उसमें नीम खल्ली, सरसों खल्ली, पोटासियम, मैग्नीशियम, डीएपी तो वो सब उसमें मिक्स करके हम तैयार करते हैं।
0: वो तो आपने छोटे पौधों के लिए अपने लिए आप तैयार करती है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तब किस तरह की खाद की जरूरत होती है?
1: जब बड़े पौधे के लिए जो मार्केट में मिलती है जैसे कि डीएपी 20-20।
0: अच्छा।
1: पोटास, फास्फोरस,
0: ये सब चीजें,
1: यूरिया, ये सब हम उसको पौधों में लगाने में प्रयोग करते हैं।
0: आपने फूलों से बात शुरू की और फलों के बारे में भी आपने बताया, आपके नर्सरी में कौन कौन से फलों के पौधे हैं और किस तरह से उसे फिर लगाया जाए?
1: फल जैसे कि आम, लीची, चीकू, नाशपाती, अनानास, अनार, ऐसे जो मेन पौधे। अभी तो हमारे यहाँ एप्पल भी लगा रहे 45 डिग्री में।
0: जो झारखंड के जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ये पूर्वी सिंहभूम और या पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका होता है, इसमें किस तरह से आप इस तरह के पौधों को लगाती हैं और कैसे ग्रो करती हैं?
1: जैसे कि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है
0: जी।
1: जिसके कारण से उसको फल होती है लेकिन उतना उसमें, जैसे कि मुजफ्फरपुर का लीची में लाल होता है, यहाँ का लीची उतना लाल नहीं होता और लीची फट भी जाती है,
0: क्वालिटी नहीं मिलता।
1: हाँ, क्वालिटी नहीं मिलता। जैसे मुजफ्फरपुर का मिट्टी है स्मूथ मिट्टी है, यहाँ थोड़ा सा लाल मिट्टी है, कंकड़ी मिट्टी है, जिसके वजह से उतना ग्रो नहीं हो पाता है।
0: तो इसमें कुछ आप बदलाव करती अपने तरफ से?
1: बदलाव तो ये करते हैं कि हमको समय समय पर उसको देख रेख करना पड़ता है और खाद डालना पड़ता है।
0: बहुत सारे ऐसे फल हैं, सही में जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अलग अलग क्षेत्र में होता है।
1: हाँ।
0: तो आपने नाशपाती, लीची, सेब, और आपने कहा कि सेब का भी मैं उत्पादन करने जा रही हूँ।
1: हाँ।
0: तो सेब के लिए किस तरह आप अपना पौधा तैयार कर रही हैं?
1: सेब के लिए तो जैसे हम दूसरे नर्सरी से लाते हैं उसका पौधा, कटिंग पौधा वो लोग कहाँ कहाँ से बना के लाते हैं, तो फिर हम अपने प्रचिचिंग करते हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं कि अभी 45 डिग्री में भी एप्पल फल रहा है, लेकिन कश्मीर जैसे उतना कलरफुल नहीं आएगा। जैसे वहाँ का लाल कलर आता है, इधर में उतना कलर नहीं आएगा। जैसे वहाँ का एप्पल में मिठास होता है तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं लगा करके।
0: अच्छा,
1: जैसे रांची इलाका में थोड़ा बहुत ठंडा है।
0: हाँ, हाँ,
1: तो वहाँ ट्राई कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: कि
0: अगर वहाँ सफलता मिली तो
1: सफलता मिले तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे, यही हमारा इच्छा है।
0: आमतौर पर लोग अपने घर के आसपास या फिर छत में गार्डनिंग करते हैं और वैसे फल जो हमारे दैनिक उपयोग में आते हैं उनका उनका पौधा लगाते हैं, जैसे कि पपीता हुआ, अगर किसी के पास जगह तो केला भी लगाते हैं। तो ये सब पौधा लगाने के लिए आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने घर के पास छोटा सा गार्डन में कुछ अच्छा उगा सके?
1: जैसे कि अपना घर का नजदीक में केला लगा सकते हैं
0: जी,
1: और पपीता भी लगा सकते हैं, क्योंकि केला और पपीता 9 महीना में फूल आ जाता है और साल भर में वो फल दे देता है।
0: अच्छा।
1: और उसमें कोई मेहनत नहीं है और समय समय में पानी भी देने से चलेगा, उतना खाद देने से भी जरूरत नहीं है और अपना समय से वो अच्छा। अगर बीच बीच में अगर आप उसको ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, ज्यादा फलदायक बनाना चाहते हैं, तो उसको पानी ज्यादा, केला को ज्यादा पानी चाहिए।
0: अच्छा।
1: पपीता को उतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए।
0: तो क्या अलग अलग किस्म के बीज भी होते हैं जिससे कि हम ज्यादा फल प्राप्त कर सकें, पपीता ज्यादा प्राप्त कर सकें?
1: हाँ, इसका अलग अलग बीज होता है।
0: किस किस तरह के बीज होते हैं?
1: G90।
0: उसमें कैसा, मैंने प्लांट बहुत बड़ा होता है?
1: हाँ, प्लांट बड़ा होता है उसका,
0: और
1: उसमें ज्यादा गुच्छा होता है।
0: कितना फल उससे ले सकते हैं, कितने बार हम उससे ले सकते हैं फल?
1: फल देखिए, केला का तो एक बार फल होता है और उसको हम उसको काट के गिरा देते हैं जब फल पक जाने के बाद में, और उससे बेबी निकलता है, उससे फिर दूसरा तैयार होता है। लेकिन पपीता ऐसा चीज है वो 2 साल तक फल देगा।
0: अच्छा।
1: और 3रा साल में फल देगा लेकिन उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो किसान लोग, उनको ज्यादा पैसा चाहिए, तो इस कारण से पपीता को वो लोग 2 साल में ही काट देते हैं, फिर दूसरा नया पपीता लगाते हैं।
0: कुछ इंडोर और आउटडोर पौधों के बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: इंडोर प्लांट को हमेशा छाई में रखना है
0: जी।
1: उसको कम रोशनी चाहिए, अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर में आप रखेंगे तो मर जाएगा।
0: अच्छा।
1: आउटडोर है उसको धूप चाहिए, लेकिन इतना भी धूप नहीं चाहिए, जैसे मई जून में हर पौधा को थोड़ा उसको छाई चाहिए, और जैसे कि उनको 2 टाइम पानी देना पड़ेगा।
0: अच्छा। आपने औषधीय पौधों के बारे में बात की और आजकल औषधीय पौधे काफी प्रचलन में है, तो किस तरह के औषधीय पौधे आपकी नर्सरी में रहते हैं और लोग कौन सा औषधीय पौधा को ज्यादा पसंद करते हैं?
1: जैसे कि मैं अपने नर्सरी में औषधीय पौधा ब्रह्मी का पत्ता।
0: अच्छा।
1: ब्रह्मी का पत्ता हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, अगर ब्रह्मी का पत्ता को हम रोज दिन 7 पत्ता खाली पेट हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मानसिक प्रॉब्लम होता है वो भी दूर होता है।
0: काफी लाभदायक।
1: हाँ, बहुत लाभदायक है। हमारे नर्सरी में जो भी आती है, हर लोगों को इन ब्रह्मी का पत्ते के बारे में हम जानकारी देते हैं।
0: तो ब्रह्मी के पत्ते के अलावा और कौन कौन से औषधीय पौधे होते हैं?
1: प्लस और एक है गिलोय। गिलोय जैसे कि जोड़ जोड़ का दर्द के लिए गिलोय का पौधा, वो भी बहुत कारगर है।
0: पुष्पलता जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और आमतौर पर कई सारे लोग हैं जो अपने घरों में पौधे लगाते हैं लेकिन शौकिया तौर पर लगाते हैं। अगर आपकी जानकारी के अनुसार अगर आपको वो सुन रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो अपने पौधों का अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और एक अच्छा बागान या उद्यान हम बोल सकते हैं अपने घर के आसपास तैयार कर सकेंगे। आप स्टूडियो में आए, अपनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पलता सोई से आप जानकारी हासिल कर रहे थे बागवानी के बारे में। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया गया। किसान भाइयों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसमें सरकार इंस्टॉलेशन लागत का 60% तक सब्सिडी देती है। यदि सोलर पैनल से आवश्यक से अधिक बिजली बनती है तो आप उसे विद्युत विभाग को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें। अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करें, मांगी गई जानकारी भरकर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। सरकार द्वारा पैनल में शामिल किसी भी वेंडर के माध्यम से अपने घर पर सोलर पैनल लगवाएं। पैनल लगाने के बाद बिजली वितरण कंपनी द्वारा नेट मीटर लगाया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

और अब इन जरूरी बातों के बाद आइए थोड़ा सा रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। सुनते हैं ये मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं पद्मा झा।

0: आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत, कलाकार थी पद्मा झा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान

0: बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001-4242।

श्रोताओं, बरसात का मौसम है और इस मौसम में सांप के काटने यानी सर्प दंश का बहुत खतरा रहता है। सर्प दंश पर झाड़ फूंक या अंधविश्वास में बिल्कुल न पड़े, यह जानलेवा है। सांप काटने पर जहर उतारने का कोई मंत्र या तरीका नहीं होता। अंधविश्वास में समय गंवाने के बजाय तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं और पीड़ित को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाएं। घबराएं नहीं, डरने से दिल की धड़कन तेज होती है और जहर तेजी से फैलता है। कटे हुए स्थान को हल्के साबुन और पानी से साफ करें। पीड़ित व्यक्ति को सीधा लिटा दें, प्रभावित हिस्से को बिल्कुल हिलने न दें। पीड़ित को एक घंटे के अंदर एंटीवेनम इंजेक्शन तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। काटे गए हिस्से के ऊपर या नीचे कोई भी कपड़ा, रस्सी या तार बहुत कसकर ना बांधें। जहर निकालने के लिए घाव पर चीरा न लगाएं या मुंह से खून न चूसें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी घरेलू या आयुर्वेदिक दवा न खाएं। कई लोग सांप काटने पर ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं, यह समय की बर्बादी है। सांप का जहर केवल डॉक्टर के पास उपलब्ध एंटीवेनम से ही हो सकता है। सांप काटने के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती होता है, इसे सही इलाज में लगाएं।

किसान भाइयों, चलते चलते आपको बता दें कि धान की बुआई दो तरीके से की जाती है, सीधी बुआई और रुपाई विधि से। सीधी बुआई में अंकुरित बीजों या सूखे बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। इसमें नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें श्रम, समय और पानी की बचत होती है। खेत को समतल करके ड्रम सीडर या जीरो टिल ड्रिल मशीन से बुआई की जाती है। कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और बीज गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 किलो बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी विधि में कुल खेत के 5 से 10% हिस्से में नर्सरी तैयार करें। बीज को 15 से 20 घंटे पानी में भिगोकर अंकुरित कर लें। 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए लगभग 50 से 60 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जब धान के पौधे 25 से 30 दिन के हो जाएं, तब उन्हें मुख्य खेत में लगाया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर और कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राजेश को दीजिए अनुमति। जोहार।

कृषि जगत, ये था ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने पर घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे सिंह, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रूपये का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जन आक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मानसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि QR कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें।
1: एक एक वोटर के लिए अलग अलग गणना प्रपत्र रहती है, उसके QR कोड के साथ उनका फोटो के साथ में सही रहती है। एप्लीकेंट बढ़ने के समय कुछ गलती हो गया तो उसका वहां पर BLO करके सुधार करने, फिर भी उसका कोई वोटर का डरने के लिए आवश्यक नहीं। आप फॉर्म में कोई गलती है नोटिस एंड हियरिंग पीरियड में भी उस सुधार कर सकते हैं। आप सिग्नेचर करके BLO के पास जमा करने के बाद BLO से दूसरा कॉपी से एक रिसिप्ट ले लीजिए, आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल में आपका नाम आएगा।
0: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि झारखंड को वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच लगभग 14,231 करोड़ रूपये की अनुदान राशि मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार की मांग की है। उन्होंने सफल जमशेदपुर बंद को सरकार के खिलाफ जनता का बड़ा आक्रोश बताया। राज्य के
2: जमशेदपुर और आदित्यपुर ऐतिहासिक मशाल जुलूस भी किया और स्वतः स्फूर्त बंद को समर्थन जिस प्रकार से उस लोह नगरी में अपने नागरिकों का मिला है, कंपनियां भी इसमें सहयोग की है, इसका जो समर्थन किया है ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर के वासियों ने दिखलाया है अपने प्रतिरोध से कि यह सिर्फ एक पार्टी का प्रतिरोध नहीं है, एक आम जनता का प्रतिरोध है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 गार्ड और कारकेड की गाड़ियां वापस कर दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है।
3: ये बात सही है, मेरे पास 16 पुलिस के जवान थे, मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे और 3 गाड़ियां थी, मैंने सबको वापस कर दिया है। क्यों किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं 3-4 दिनों में इस बात को भी सामने रखूंगा, लेकिन इतनी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का कहीं कोई ये नहीं है, नहीं उनके तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ये भी हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
0: देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें OPD और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंधक ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पुराना विधानसभा परिसर में आज विधायकों के लिए साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष और सांसद महुआ माझी ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कानून को और अधिक सख्त बनाने की मांग की।
1: बहुत ही चिंता का विषय है, इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और शायद ही कोई ऐसा घर है जहां के लोग इससे त्रस्त ना हो। तो इसके लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धाराओं को इस तरह से लगाना होगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
0: पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया, जिससे अब उन्हें प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
2: 30 साल से जो मेरे जमीन थे उनका रसीद नहीं कट रहा था, बहुत टाइम से मैं परेशान थी। तो मैंने डीसी सर से आकर के मिला और उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया एसी सर को, तो मेरा काम हो गया। काफी परेशानी हुई थी, जैसे मुझे जमीन से ही कुछ काम करवाने हो तो उसमें रसीद क्लियर चाहिए, या फिर मुझे ओबीसी बनवाना हो तो उसमें भी रसीद क्लियर चाहिए।
0: पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और पत्रकार कल्याण योजनाओं पर भी विचार साझा किए गए। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसुकीनाथ धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने रूट लाइन, शिवगंगा और टेंट सिटी सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं देने का निर्देश दिया। राज्य में मानसून सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। आज गुमला और लातेहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा हुई। 5 जुलाई को पलामू प्रभाग और 6 जुलाई को रांची तथा हजारीबाग सहित मध्य भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और गुमला सहित राज्य के 10 जिलों में अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने से घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे से, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावर, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले के अंचल सभागार में सोमवार को जनवितरण प्रणाली के सभी डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसओ खुशबू तिर्की ने

0: राशन वितरण, ई केवाईसी, ग्रीन कार्ड एवं चना दाल वितरण सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उधर अड़की प्रखंड क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में मंगलवार को देर रात छापामारी कर अड़की थाना पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के 460 बोतल अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि हब्लू डब्लू के फास्ट फूड दुकान में गुप्त तरीके से अवैध और मिलावटी शराब बिक्री किया जाता था। इस संबंध में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया,
1: अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापामारी की गई। उस छापामारी में कुल 460 बोतलें बरामद हुई, जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद अवैध तरीके से कागजात की मांग की गई, तो उन्होंने कोई कागजात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और FIR दर्ज की गई, जिसमें दुकान के संचालक जो लाइसेंसधारी है उनका भी नाम सामने आया है, जो अवैध तरीके से शराब की खरीद बिक्री करी हो रही है।
0: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग खूंटी द्वारा प्रत्येक माह की 2 तारीख को आयोजित किए जाने वाले चावल दिवस के तहत जिले के जनवितरण प्रणाली दुकानों में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उराव ने बताया,
2: खूंटी के जो उपायुक्त हैं उनके निर्देशानुसार हर माह के 2 तारीख को चावल दिवस मनाया जाता है। चावल दिवस का मेन उद्देश्य है कार्डधारियों को जागरूक करना और उन्हें राशन मिलना। इसमें क्या होता है कि सारे जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाती है, सारे कार्डधारियों को जानकारी दी जाती है, पर प्रचार प्रसार करके डीलर के यहाँ जो भी खाद्यान्न हो वो बांटने के लिए सभी कार्डधारियों को सूचित करता है और विशेष अवसर पर राशन का वितरण करता है। और इससे लोगों में जागरूकता आती है, कार्डधारियों में जागरूकता आती है, उन्हें जानकारी होती है कि चावल मिलना शुरू हो गया है, इसका मेन उद्देश्य यही है।
0: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर प्रगणना अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी BLO पूरी सक्रियता के साथ घर घर जाकर मतदाताओं के बीच प्रगणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में उपायुक्त ने बताया,
3: 30th जून से लेकर 29th ऑफ जुलाई तक हाउस टू हाउस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनुमेरेशन फेज चल रहा है। इसमें सारे BLOs को, जितने भी हमारे योग्य मतदाता हैं, सभी को आप फॉर्म जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है हाउस टू हाउस। उसके बाद उन्हें 2 प्रति में फॉर्म दिया जाएगा। जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे जो फील्ड फॉर्म होगा वो रिटर्न हमारे BLOs के पास आएंगे, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। तो ये कार्य हमारा लगभग 1 महीने अभी चलने वाला है, 29 जुलाई तक। लोगों से भी अपील रहेगी कि जो भी आपको गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसको टाइमली आप कम्प्लीट करके एज सून एज पॉसिबल उसको।
0: इधर गुरुवार को खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ पंचायत में जन समस्या निराकरण एवं परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन कर 92 लाभुकों के बीच 6,57,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
4: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये था बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी।

0: कमी का होना। और जब ये समस्या बहुत गहरी हो जाती है तो हम एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। रक्त की कमी होने से हमें हमेशा थकावट और सुस्ती का अनुभव होता है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी हो जाती है, इसलिए कि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन बने। रक्त की कमी होने से बाहरी वायरस या संक्रमण से भी हमारी बॉडी लड़ने में नाकाम हो जाती है। इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं के काउंट भी कम हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिन्हें भी एनीमिया की समस्या होती है उन्हें थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और कभी कभार तो सिरदर्द भी महसूस होता है। और जब हमारे रक्त का स्तर बहुत कम हो जाता है तो जरूर हमें चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं में ये समस्या अधिक पाई जाती है क्योंकि प्रति माह महिलाएं माहवारी से गुजरती हैं और प्रसव का दायित्व भी महिलाओं को वहन करना पड़ता है। तो श्रोताओं, ऐसे में हम सभी को अपने डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन की थाली में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हों जिसमें आयरन और विटामिन से भरपूर पोषक तत्व हों। हरी पत्तेदार सब्जियां तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी होती हैं। साग, पालक, शिमला मिर्च, इसके अलावा मौसमी फल सब्जियों को भी हम ले सकते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन B12, मैग्नीशियम इत्यादि कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अनार के सेवन से भी हमारे ब्लड काउंट में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, सी और ई, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और भरपूर मात्रा में आयरन होता है। ऐसे में ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए कभी कभी डॉक्टर्स भी खून की कमी होने पर अनार का जूस पीने की सलाह देते हैं। खून की कमी पूरी करने में खजूर भी बेहद असरदार है, लेकिन अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो उसे इसकी जगह में पंपकिन सीड्स का सेवन करना चाहिए। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में तो चुकंदर का भी कोई जवाब नहीं, लेकिन समस्या आती है स्वाद की। तो ऐसे में सब्जियों के साथ या सलाद के रूप में मिक्स करके हम चुकंदर का सेवन कर सकते हैं और इसे अगर हम काले नमक के साथ मिलाकर खाएंगे तो इससे भी हमारा पाचन दुरुस्त होगा। केला खाने से भी हमारे शरीर में ब्लड काउंट बढ़ता है। ये आयरन से भरपूर होता है और इससे रेड ब्लड सेल्स अच्छे तरह से काम करते हैं। हम आंवले का भी सेवन करें तो बेहतर है क्योंकि इससे भी हीमोग्लोबिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ जाता है। संतरे, नींबू, शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, जामुन ये अधिक खाएं क्योंकि इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और यह शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। अभी तो आम का सीजन चल ही रहा है तो आम भी आयरन के मामले में काफ़ी रिच कहा जाता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं, तो आम का भी सेवन जरूर करें क्योंकि एनीमिया को दूर करने में यह भी लाभकारी है। तो श्रोताओं, शरीर में रक्त की मात्रा अच्छी बनी रहे इसके लिए हम जरूर कुछ ऐसे पोषक तत्व को प्रतिदिन खाएं जिसमें आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। कार्यक्रम कल्याणी के अगले चरण में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय, प्रसव के समय किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनीष कुमार झा। श्रोताओं, मातृत्व का सुख जीवन में एक अनुपम पल का एहसास होता है और सभी महिलाओं के लिए ये एक ईश्वरीय वरदान भी है। पर कई बार जब परिवार में महिलाएं गर्भवती होती हैं तो हर कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित भी रहता है, सजगता और सावधानी भी रखना चाहता है। इस अवस्था में किस तरह से हम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहें ताकि ये जो प्रसव का समय है वो बहुत ही सहूलियत और सावधानी के साथ बीत जाए, आइए इस विषय पर हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर मनीष कुमार झा से।
1: जी नमस्कार। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार झा। आज हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सुरक्षित प्रसव एवं नवजात शिशु की देखभाल पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु से होती है, इसलिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सही जानकारी होना

स्वास्थ्य परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आजकल के लाइफस्टाइल के कारण भी लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है और जो लगभग हर किसी में देखी जाती है वह है शरीर में रक्त की कमी।

0: बहुत आवश्यक है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी सावधानी माँ को बरतनी चाहिए ताकि उसका जो नवजात शिशु है वो बिल्कुल सुरक्षित मुस्कुराता हुआ इस दुनिया में आए?
0: जी देखिए, प्रसव की प्रकृति जो है ये एक समान प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही और बच्चे दोनों के लिए, माँ और बच्चे दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। सबसे पहले गर्भवती महिला की कम से कम 4 से 6 बार नियमित जांच होनी चाहिए,
1: जी
0: और प्रसव की संभावित तिथि नजदीक आने पर परिवार को पहले से यह तय कर लेना चाहिए कि प्रसव कहाँ होगा, अस्पताल तक पहुँचने की व्यवस्था क्या होगी, और आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता भी कहाँ से मिल सकेगी। प्रसव के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रसव जो है वह एक प्रशिक्षित डॉक्टर, स्टाफ नर्स या ANM की निगरानी में हो, और दूसरी चीज है कि प्रसव का जो स्थल है वो पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। माँ का रक्तचाप, नाड़ी, रक्त स्राव और बच्चे की धड़कन की नियमित निगरानी होनी चाहिए, और किसी भी जटिलता की स्थिति में तुरंत रेफरल की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध होनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो वो बेहिचक अपने डॉक्टर्स को बता दे ताकि डॉक्टर्स उस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी देखरेख करें।
0: जी बिल्कुल, ये जब लगातार नियमित अगर जांच होती रहेगी 4 से 6 बार, जैसे कि हर महीने के हिसाब से, तो ये जानकारी डॉक्टर को अवेलेबल हो जाती है अगर कोई समस्या होती है तो।
1: अक्सर जो महिलाएं पहली बार माँ बनती हैं उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि कितने महीने के बाद की डिलीवरी सामान्य कही जा सकती है या स्वस्थ कही जा सकती है, तो इस विषय पर आप क्या बताएंगे?
0: देखिए, सामान्य गर्भावस्था लगभग 40 सप्ताह यानी कि 280 दिन की होती है। 37 सप्ताह से पहले होने वाली डिलीवरी को समय पूर्व प्रसव यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी कहा जाता है, और 37 से 42 सप्ताह के बीच होने वाला प्रसव सामान्य माना जाता है। 42 सप्ताह के बाद प्रसव नहीं होने पर डॉक्टर की विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे और माँ दोनों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।
1: प्रसव सुरक्षित हो इस बात की जिम्मेदारी कई बार गर्भवती महिलाओं को भी लेनी होती है, तो उन्हें अपनी तरफ से किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह विशेष देखभाल की अवस्था है। गर्भवती महिला को चाहिए कि संतुलित भोजन ले, जिसमें दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां जो हैं वो नियमित लेनी चाहिए। टेटनेस या डॉक्टर द्वारा और भी अगर कोई टीके बताए जाते हैं तो वो लगवाने चाहिए। इसके अलावा तंबाकू, शराब एवं अन्य नशे से पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए, तनाव कम रखना चाहिए, नियमित जांच कराना चाहिए, और अगर कुछ लक्षण है जैसे कि योनि से रक्त स्राव, हाथ पैर या चेहरे में अत्यधिक सूजन हो रही है, और तेज सिर दर्द हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, और बच्चे की गतिविधि अगर कम महसूस हो रही है, उसके अलावा पानी का जो थैली होता है वो फटना, अगर इस तरह से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
1: आजकल हम सभी योग को स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, तो क्या गर्भवती महिलाएं इस अवस्था में योग या व्यायाम कर सकती हैं?
0: नहीं, इस तरह के अगर योनि में अगर किसी तरह के लक्षण दिखाई दे रहे, जैसे रक्तस्राव हो गया, चाहे सूजन वगैरह हो गया, तो इस कंडीशंस में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सभी तरीके से ठीक है तब उनको हल्का वॉक करना चाहिए, और कुछ योग हैं लेकिन जो योग टीचर है उनसे जानकारी लेके वो योग करना चाहिए।
1: अक्सर सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव की बात आती है, तो इस विषय में हमें बताएं कि ये क्या है और कितना जरूरी है?
0: संस्थागत प्रसव का अर्थ है अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्था में प्रसव कराना। इसके लाभ हैं जैसे कि प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहते हैं। प्रसव के दौरान अगर किसी तरह की मुश्किल आती है, जटिलताएं आती हैं, तो तुरंत इलाज हो सकता है। आवश्यकता पड़ने से ऑपरेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो सकती है। माँ और बच्चे को जन्म के बाद निगरानी और टीकाकरण की भी सुविधा उपलब्ध होती है, और भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं भी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हो सके। देखिए, मैं सभी परिवारों से कहना चाहूंगा कि अनुभव और परंपरा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन चिकित्सा सुविधा का कोई भी विकल्प नहीं है। घर में जब बहुत सारे लोग, चाहे जो पुरानी दादी माँ या जो भी पुरानी महिलाएं थी, वो प्रसव कराती थी, लेकिन वो समय और बहुत सारी मुश्किलें होती थी, और अभी के समय में भी इस तरह की समस्याएं होती है, जैसे कि घर में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, बच्चा जो है वो उल्टी स्थिति में हो सकता है, बच्चे को जन्म के बाद सांस लेने में कठिनाई हो सकती है,

0: संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है और माँ और बच्चे की जान का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा रहता है। दुर्भाग्य से अधिकांश गंभीर समस्याएं पहले से दिखाई नहीं देती, इसलिए यह मान लेना कि पिछली बार घर में बहुत अच्छे तरीके से प्रसव हुआ था तो इस बार भी सही तरीके से हो जाएगा। मेरी सभी बहनों और परिवार के सदस्यों से निवेदन है कि गर्भावस्था की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं, नियमित जांच कराएं और प्रसव केवल संस्थागत स्तर पर ही कराएं। याद रखिए, सुरक्षित मातृत्व तो हर महिला का अधिकार है और सुरक्षित जन्म हर बच्चे का अधिकार है।
1: यूँ तो एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण अभी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर और बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर समाज की सोच बदली है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है और फिर बहुत ही कच्ची उम्र में मातृत्व का बोझ भी उन पर आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, इस विषय पर आपका क्या विचार है?
0: देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की परिस्थिति है कि लड़कियां जो है आपका 15 साल 16 साल की उम्र में शादी करती है और उनका खुद का जो शरीर है वो उस लायक नहीं रहता, लेकिन फिर भी माँ बनती है और बहुत ही खतरा रहता है उन लोगों को। तो सबसे पहले तो जो शादी की उम्र है 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 18 साल से ऊपर होने के बाद सबसे पहले अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कराएं कि आपके हाइट के अनुसार आपका वजन है या नहीं। पहले जांच कराना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन प्रॉपर है कि नहीं, सारी विटामिन्स आयरन की कमी तो नहीं है, उसके बाद ही गर्भावस्था धारण करना चाहिए।
1: हर महिला चाहती है कि वो एक सामान्य प्रसव से गुजरे। ऑपरेशन के द्वारा प्रसव की प्रक्रिया बहुत मान्य आज भी नहीं है, तो आप महिलाओं को क्या सलाह देंगे कि वो अपनी ओर से किस तरह के प्रयास करें या उनकी जीवन शैली, उनका भोजन किस तरह का हो कि उन्हें सामान्य प्रसव हो?
0: देखिए, कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है कि जब तक आप अपना शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे और नियमित जांच नहीं कराएंगे, तब तक संभव नहीं हो पाता है कि यह नॉर्मल डिलीवरी है कि नहीं। उसके बाद जो है, जब आप गर्भावस्था धारण कर लें, तो गर्भावस्था धारण करने के बाद में जैसा आपने पहले बोला कि वॉकिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले अपना वजन देख लें, अपना कंडीशन देख लें, डॉक्टर से राय विचार कर लें और उसके बाद जो है योग कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उसमें ध्यान जो रखना है वो खान पान का जरूर रखना।
1: डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अब तो सुनने वाली हमारी महिला बहन जरूर ये समझ पाएंगी कि प्रसव की अवस्था में डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम अपने भोजन, आराम और डॉक्टरी सलाह का ख्याल रखते हुए इस समय को गुजारेंगी तो हमें कभी कोई समस्या नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: प्रसव के समय बरती जाने वाली सावधानी। श्रोताओं, अभी आपने सुना इस विषय पर भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर मनीष कुमार झा। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कल्याणी से मुझे दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म राजकुमार का ये गीत, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: बातों बातों में। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाजें थी अमित कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था योगेश ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।
1: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
0: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
0: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
0: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
0: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और इस गीत को

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

गम। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम, अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने।

आक्रमण फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म मझधार से, आवाज अलका याग्निक की है। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र

0: बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

0: इन और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म आरोप का गीत, जिसे लिखा था माया गोविंद ने और धुन था भूपेन हजारिका का।

सितमगर फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत था आर डी बर्मन का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन। पहले सुनते हैं राग हेम बिहग।

अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन। अभी आपने सुना राग हेम बेहद। आइए अब सुनते हैं धुन पहाड़ी।

अभी आपने सुना पंडित विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा वादन, राग था धुन पहाड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से

हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।